भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

अच्छा, आपने कभी किसी की खामोशी को पढ़ा है? मुझे लगता है खामोशी एक ऐसा वर्ड है, साइलेंस एक ऐसा वर्ड है जिसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर कोई सामने वाला आपसे कुछ नहीं कह रहा है तो वो चुप है। मुझे लगता है साइलेंस में भी हजारों शब्द छुपे होते हैं, किसी की चुप्पी में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे वर्ड्स छुपे होते हैं। बस ये बात अलग है कि कभी हम नहीं पढ़ पाते, कभी हमारे साइलेंस को सामने वाला नहीं पढ़ पाता है। यू नो, जब एक इंसान साइलेंस है उसके कई सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि वो आपसे नाराज हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो एक रिश्ते में एफर्ट करके थक गया है, ऐसा भी हो सकता है कि उसे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है उसे पेन है, चाहे दिल का पेन हो चाहे फिजिकल पेन हो। कई बार इंसान दूसरे से नहीं कहता है, नहीं शेयर करता है, कई बार वो बाहर से बहुत हारा हुआ हो सकता है। तो साइलेंस जो है उसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि एक इंसान चुप है और उसे थोड़ी देर, बहुत मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि चुप रहने देते हैं, थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं। साइलेंस के भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत सारी बातें हैं उस चुप्पी में जो छुपी होती हैं। अगर आप उन्हें पढ़ पाते हैं तो आप अपने रिश्ते को खूबसूरत बना पाते हैं, और अगर नहीं पढ़ पाते हैं या आप उस बंदे को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आप एक रिश्ते से बहुत दूर हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है, मुझे लगता है, आप किसी बोलते हुए इंसान से बात करें ना करें, जब कोई चुप है तो उससे जरूर बात करें। एक और ट्रैक मेरे साथ इसी बात पर सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 1701 FM।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ हैं आप और मेरे साथ हैं आज कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत मॉर्निंग ट्रैक्स। जी हाँ, मॉर्निंग ट्रैक्स की एनर्जी जो है अपने आप में ये एक बढ़िया सी एनर्जी है। वैसे आजकल की इस एनर्जी को मैं जरा कम ही फील कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे देखिए बीट्स तो समझ आते हैं, है ना, और उन बीट्स के साथ भाई ऐसा भी लगता है कि भाई सुबह के बीट्स हैं और उन पर थिरक भी लेंगे आप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अगर उसके वर्ड्स को समझने बैठेंगे तो आधे से ज्यादा आपके सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। अब भाई बॉलीवुड के ट्रैक्स के साथ तो भाई ऐसा ही है ना। तो ये अगर कहूँ कि बहुत पसंद आते हैं या बहुत अच्छे लगते हैं तो भाई मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आधे से ज्यादा ट्रैक्स तो समझ ही नहीं आते। लेकिन एक बात तो है कि ये गाने जो हैं ये फील जरूर करवाते हैं कि भैया सुबह हो गई है, इतना शोर, इतनी अच्छी बीट्स, काफी गानों की बहुत अच्छी है भाई, और उनके साथ जो है आप वर्ड समझ में आए ना आए कम से कम दिन की बढ़िया शुरुआत तो करते हैं, है ना। तो चलिए फिर एक और नई शुरुआत इस गाने के साथ करें, आगे बढ़े, एंजॉय कीजिए इसे एंड कीप लिसनिंग टू जी हां आपका अपना इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। इसे आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ।

देखिए, सुबह के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो दो चीजें होती हैं। एक तो कि आपको अपने दिन को कैसे खूबसूरत और बेहतर बनाना है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगती है वो ये है कि किस तरह से आप सुबह का ब्रेकफास्ट सबके लिए बहुत ही बढ़िया और हेल्दी बना पाएं। ये दो चीजें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके घर में मेड है और ब्रेकफास्ट उसे बनाना है तो भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि सब ब्रेकफास्ट करें और हेल्दी ब्रेकफास्ट हो, है ना। तो ये दो चीजें जो हैं ये आज की मॉर्निंग भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो दिन की शुरुआत ऐसी हेल्दी होनी चाहिए जिसके साथ पूरा फैमिली एक बढ़िया एनर्जी के साथ दिन को शुरू करे, और उसके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। सब मुझे लगता है एक फैमिली में अगर मिलकर करते हैं ना एक्सरसाइज भी तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एक तो मजा आता है सबको साथ में, और फिर दूसरे चैलेंजेस आप एक दूसरे को बढ़िया दे पाते हैं जिसके साथ वो एनर्जी जो है वो बोरिंग नहीं लगती। एक्सरसाइज अक्सर लोगों को बोरिंग लगती है, बट जब साथ में आप करें और उसके बीच में एक हेल्दी माहौल बना रहे तो वो एक्सरसाइज भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने कहा ब्रेकफास्ट, तो उसका भी ख्याल रखिए कि घर में जो भी बने वो हेल्दी बने और बिना ब्रेकफास्ट के किसी को घर से नहीं जाना है, ठीक है जी। तो चलिए फिर एक और ट्रैक मेरे साथ अभी एंजॉय कीजिए, एंड यस ऑफ कोर्स एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रह्मवाणी 107.01 AM पर।

सताक्षी के साथ ये साथ है इट हैपेंस का रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। किसी ने मुझसे पूछा कि सताक्षी ये बताओ चीटिंग क्या होती है। आप देखिए आजकल चीट करना हम उसे कहते हैं कि भाई सामने से किसी को नुकसान पहुंचा देना, फिर चाहे रिलेशनशिप में हो एक बंदा जो है वो अपनी वाइफ को हस्बैंड को चीट करे या फिर ऐसा हो कि पैसों की चीटिंग हो, मतलब सामने से किसी को नुकसान पहुंचाना आप उसी चीटिंग के फॉर्म में काउंट करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि चीटिंग सामने से की जाए वो जरूरी नहीं है। चीटिंग इमोशनली भी होती है और फिजिकली भी होती है। और इमोशनल चीट करना मतलब आप छुप कर किसी को धोखा दे रहे हैं, है ना। आपकी वाइफ को नहीं पता कि आप का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो भी चीटिंग है। उसे नहीं पता तब भी आप चीटिंग ही कर रहे हैं क्योंकि आप उसके इमोशंस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उनके साथ खेल रहे हैं। आप बच्चों की बात करूं तो कई बार हम क्लास बंक करते हैं बच्चे, है ना, और पेरेंट्स को नहीं पता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है या कहां जा रहा है, कैसा फ्रेंड सर्किल है। बेसिकली ये भी चीटिंग की कैटेगरी में आता है। तो चीटिंग सिर्फ और सिर्फ सामने से नहीं होती है, कई बार और खासकर आज के टर्म्स में हम कई बार छुप कर एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। सो यस, बहुत ख्याल रखिए कि अगर आप पर भरोसा किया गया है, अगर आपको मौका दिया गया है कि आप लोगों का विश्वास बनाए, तो उसे चीटिंग के दायरे तक ना लेकर जाएं। आइए एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ अभी और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

इटहैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। और इटहैपेंस के साथ हमारा आपका ये जो साथ है, साथ की खूबसूरती है, इसे भी हम आगे लेकर चल रहे हैं। एक रिश्ते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? एक रिश्ते में, चाहे वो दुनिया का कोई भी रिश्ता, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता हो, आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता हो, रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उस रिश्ते में बात करते हुए आपको डर नहीं लगना चाहिए। जिस वक्त आपको ये महसूस होता है कि आप इस इंसान से कोई भी बात कर सकते हैं, किसी भी बात को लेकर आप कंफर्टेबल हैं, सो वो रिश्ता डेफिनेटली बहुत खूबसूरत होता है। और जहां पर आपको ये फील होता है कि यार पता नहीं इस बंदे के साथ बात करना या अपने ये बात कहना कितना सेफ रहेगा, या पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं, कई बार बच्चों के मन में ये इनसिक्योरिटी होती है कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, वहां पर रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। राइट, सो एक हेल्दी माहौल रहे, एक हेल्दी रिलेशन रहे दो लोगों के बीच में, एक परिवार के बीच में, ताकि जिस बात को कहने से हम डरते हैं वो डर जो है वो निकल सके और खुलकर आप एक दूसरे से बात कर सकें। ये है एक रिश्ते की खूबसूरती। और इसी खूबसूरती के नाम एक और ट्रैक अभी प्ले कर रही हूँ आपके लिए, एंजॉय कीजिएगा और कहीं मचाइएगा भाई, हम हैं आपके साथ और आपके लिए प्ले कर रहे हैं कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने।

तो दोस्तों ये था आज इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और साथ। आज हमने फिर से जिंदगी को कुछ समझा, कुछ जाना, कुछ जिया और कुछ सेलिब्रेट किया। तो ये जो लम्हे हैं जिंदगी के, इनके साथ आप अब जीते रहिए, अपने दिन की शुरुआत कीजिए एक बेहतरीन शुरुआत और अपने गोल की तरफ बढ़िए। मेरी आपसे मुलाकात कल फिर से इट हैपेंस में होगी रेडियो ब्रिस्वानी पर, और आज के सफर से अब लूंगी इजाजत। हैव अ ग्रेट डे, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, नमस्कार।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूं लैके वड्डी खबर सामने आई डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विवादों में घिर गए ने एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा होया कि ट्रंप या उन्हां दे सलाहकारां ने इस साल के पहले 90 दिनों में अमरीकी शेयर बाजार में 3700 तो वध स्टॉक ट्रेड किया इन्नी वड्डी गिनती में किए गए सौदियां ने वॉल स्ट्रीट के दिग्गजां नूं हैरान कर दिता है हुण उह इस नूं लैके वड्डी जांच का सामना कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मुताबिक साल 2026 के पहले तीन महीने यानी कि जनवरी तो मार्च दौरान ट्रंप ने औसतन रोजाना 40 तो वध सौदे किए। आंकड़ा पिछली तिमाही के मुकाबले बहुत ज्यादा है क्योंकि 2025 के आखिरी तीन महीनों में सिर्फ 380 के करीब सौदे हुए सन। इन्होंने सौदों में अमरीका दीआं वड्डीआं आईटी वित्त एरोस्पेस मीडिया कंपनियों में करोड़ा डॉलर का लैण देण शामिल है। रिपोर्ट मुताबिक ट्रंप ने NVIDIA माइक्रोसॉफ्ट बोइंग ओरेकल कोस्टको वर्गियां कंपनियां विचों हरेक विच घट्टो घट 1 मिलियन डॉलर के शेयर खरीदे। सब तो वड्डा लैण देण 10 फरवरी नूं होया जदों उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट मैटा ते अमेजोन विच 5 मिलियन तो 25 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की हिस्सेदारी वेच दी सी। उधर संयुक्त अरब अमीरात की जो गल करिए उत्थों दे बरका परमाणु ऊर्जा प्लांट नूं निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले नूं लैके वड्डा खुलासा होया। यूएई दे रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सारे ड्रोन इराकी खेतर तो आए सन। रक्षा मंत्रालय के इस ऐलान तो बाद दे संभावना जताई जा रही है कि एतवार नूं होए इस हमले पिछे ईरान समर्थित शिया मिलीशिया का हथ हो सकता है। जिक्र योग है कि इन्हों मिलीशिया समूहों ने पहला भी खाड़ी अरब देशों नूं निशाना बना के ड्रोन हमले किए सन। हालांकि अजे तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है पर ईरान ते उन्हां दे सहयोगियों ते शक जताया जा रहा है। इसका मुख कारण तेहरान का कंट्रोल ते ईरान के खिलाफ अमीराती अधिकारियों की तिखी बयानबाजी है। उधर बांग्लादेश के चटगांव में स्थित भारतीय सहायक हाई कमीशन के एक अधिकारी की शकी हालात में मौत होने का मामला सामने आया है। मंगलवार को स्थानक पुलिस ने चटगांव की कुलछी इलाके में स्थित भारतीय दफ्तर से एक भारतीय नागरिक की लाश बरामद की। मृतक की पछाण 35 साल नरेंद्र वजो हुई है जो हरियाणा का रहने वाला सी। हुण तक दी अहम खबरां विच बस इना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी ते सुझाव देने दे लई तुसी साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तो सानू ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी brisoni@brisoni.com। इस नाल ही तुसी साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे जरिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो ब्रिसोनी 1091। फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लैके। तकली दी इजाजत, सत श्री अकाल।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लब्भण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। हां तुसी बड़े होए हो जी। थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी वंसन वारे हम ते जी आप जी संदेश शलक दनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्ला करन दा सारा बहुत सोहना जवड़ा शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की खाना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल, तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रसोनी वंसन वारे हम सारे फेसबुक पेज है जी ते brasoni@brasoni.com साडी ईमेल आईडी है। सरिया जेड़ा थानू चंगा लगदा तुसी अपना पर साडे नाल गल्लां बातां देखो जरूर जरूर करते रहा करो, है ना। तां फटाफट जुड़ना शुरू कर दो फटाफट दे नाल। ते मैं बस सुने वापिस आनी हाँ, थोनू कला कि दिन छड़ के जाना। एक गीत थोनू सुनानी हैगी मैं, तुसी इन्हां गीतां नूं इंजॉय करो। मैं हुणे वापिस

पर हमेशा जो भी स्क्रीन ते आती है ना तो पुरानिया यादा ताजिया कर दिंदी है। नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी ने ना बहुत छोटी उम्र विच एक्टिंग दी दुनिया विच कदम रख लिया सी। अपने करियर दे दौरान श्रीदेवी ने सदमा, नगीना, चांदनी, इंग्लिश मिस्टर इंडिया, चा जुदाई, चालबाज वर्गिया कई यादगार फिल्मा कीतिया जिन्हों तो उन्होंने वक्री पहचान मिली। तो मैं सोचा कि अज श्रीदेवी दियां कुछ फिल्मा बारे गल करिए, पर उन्हां फिल्मा बारे नहीं जिन्हां दे करके फेमस हुई, क्योंकि वह फिल्मा तो सब नूं पता ही है कि ने जुबान ते रहिंदियां ने ना, जिवें मिस्टर इंडिया हो गई, चालबाज हो गई, इन्हां नूं किवें भुल सकता है कोई। हाँ, उन्हां फिल्मा बारे गल करदे आं जिन्हां नूं श्रीदेवी ने रिजैक्ट कर दिता सीगा। दस दो, तुसीं हैरान रह जाओगे जे तुसीं उन्हां फिल्मा बारे जाणोगे। तां करदी आं तुहानूं हैरान, पर पहला सुणो इह गीत।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

अनुजी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी वंसन वाने अम्ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। इस लिस्ट दे विच सब तो पहला नाम केड़ा आंदा है गाय केड़ी लिस्ट उही लिस्ट के श्रीदेवी ने केड़िया केड़िया फिल्मा रिजेक्ट कीतिया ने ता ओ लिस्ट दस रही हां मैं ता इस रिपोर्ट्स दे विच इस लिस्ट विच सब तो पहला नाम बाहुबली आंदा रिपोर्ट्स मेरे मुंह चो ता निकले क्योंकि रिपोर्ट्स दे आधार ती ता सारी गल करनी है की ता देखो मीडिया रिपोर्ट्स दी जे मनिए बहुत सारे लोग वैसे मीडिया दी गल्लां नूं सच नहीं मानदे पर बहुत सारियां उदा ही नहीं करदे हुंदे सच हुंदियां ने ता देखो मीडिया रिपोर्ट्स दी मनिए ता श्रीदेवी नूं फिल्म बाहुबली विच शिवगामिनी दा रोल ऑफर होया सी। शिवगामिनी दा रोल तो सब नूं याद है ना बाहुबली दे विच मोस्ट इंपोर्टेंट रोल बाहुबली दी मां दा रोल पर उन्होंने इस नूं मना कर दिता सी ते किरदार रामिया कृष्णन दी चोली विच पिया सीगा है ना बहुत ही स्ट्रोंग ते बहुत ही सोहना ते हैरानी हुंदी है ना कि श्रीदेवी ने किवें मना करता सी इस रोल दे लई।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जी देख फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 107.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल से बने हुए हो। अमिताभ बच्चन दे नाल श्रीदेवी ने बहुत सारियां फिल्मां कीतियां। देखो सवाल थोड़े लिए फिर मैं यही छड़ दिनी हां कि तुसी दसो कि अमिताभ बच्चन दे नाल केड़ियां केड़ियां फिल्मां हैगियां ने जिहड़ियां उह श्रीदेवी ने कीतियां या केड़ी सब तो ज्यादा हिट रही है। दसो दसो तुसी जवाब दिओ। रेडियो बसवाणी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। कोई भी जरिया अपना के जवाब दियो। तो मैं हुण इस नाल जुड़ी हुई अगली फिल्म का नाम दस दिनी हां जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, तो फिल्म सी मुहब्बतें। जी हाँ, मेकर्स इस मूवी विच अमिताभ बच्चन के अपोजिट श्रीदेवी नूं लैणा चाहुंदे सी, पर उन्होंने उसनूं करन तों मना कर दिता सी। इस फिल्म नूं भी करती सी कोरीना, बाद विच किरदार ही फिल्म तों हटा दिता गया, किसी ने रोल किया ही नहीं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश और दिन से बने हुए। एक फिल्म सी जिसने काजोल नू बहुत वड्डा स्टार बना दिता। शाहरुख खान तो पहला ही स्टार सीगे ते इन्हां दी जोड़ी नू इस फिल्म तो बाद कुछ ज्यादा ही पहचान मिली सी। फिल्म का नाम है जी उस विच शिल्पा शेट्ट भी सी। आ गई ना यार बिल्कुल सही पहचान है। फिल्म का नाम है जी बारसीकर। इस फिल्म नू भी श्रीदेवी ने करती सी कोरी ना। इस फिल्म विच श्रीदेवी नू डबल रोल ऑफर होया सी पर एक्ट्रेस ने मना कर दिता। फिर जदों उन्होंने मना कर दिता ना तो बाद विच मेकर्स ने फिल्म की कहानी विच बदलाव ही लिया। देखो पर यह चीज तुसी समझो कि श्रीदेवी दी किड्डी तकड़ी इंपोर्टेंस थी ना कि जिहड़ी फिल्म नू कईआं नू मना करदी सी तां उस दे विचों किरदार ही हटा दिता जांदा सी बाजीगर दे विचों मुहब्बते दे विचों। अगे भी मैं दसदी आं इस बारे सबर रखो।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वनसरों ते चार छे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए हो। अगली फिल्म जिहड़ी इस लिस्ट दे विच आउंदी हैगी है जिसनू रिजेक्ट किया श्रीदेवी ने ओ सी जी बहुत ही हिट सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान। तो देखो अमिताभ बच्चन की इस फैमिली ड्रामा विच उन्हां दी ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया है। ये रोल पहला हेमा मालिनी नूं ऑफर नहीं होया सी, मतलब कि हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं हैगी अमिताभ बच्चन की इस अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के लिए डब मेकर्स की। ये रोल पहला श्रीदेवी के हिस्से आया सी पर उन्होंने इसनों रिजैक्ट कर दिता। रिजैक्ट होया तो फिर ये हेमा मालिनी कोल गया, नो डाउट हेमा मालिनी इस रोल दे विच बिल्कुल परफेक्ट लगी।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी फॉर द बायर।

0: फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
0: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

हाँ जी, तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आज संदेश अलग दिनाल से बने हुए करिश्मा कपूर माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की एक बहुत ही जबरदस्त सोहनी जही फिल्म सी। तो उस फिल्म का नाम है जी दिल तो पागल है। शाहरुख खान स्टारर मूवी हैगी है, बहुत ज्यादा पसंद भी की गई सी। इस विच पूजा किरदार हैगा जिहड़ा ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी। पूजा हुण तुसीं पहले सोचो सोचो सोचो कि पूजा केड़ा किरदार सी। ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी तां श्रीदेवी ने मना कर दिता सी, तां इह रोल बाद विच किसे होर दे हिस्से आया सी। हुण तुहानूं पता लग गया ना कि पूजा किरदार किसदा सी। जी हां, पूजा किरदार निभाया सी माधुरी दीक्षित ने, पर इस दे लई पहला चुनिया गया सी श्रीदेवी नूं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो द सोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। एक और शाहरुख खान की मूवी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की सी, ते वो मूवी सी जी डर। डर दे विच पहली बार तो शाहरुख खान नैगेटिव रोल दे विच नजर आए सी। शाहरुख खान सनी देओल की फिल्म है डर। जूही चावला ने किरण का किरदार निभाया सी। बहुत घट लोग जानते ने कि यह रोल पहला श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी, पर श्रीदेवी ने इस नूं मना कर दिता सी, तां फिर रोल गया जूही चावला दे हिस्से। तां नो डाउट जूही चावला ने इस नूं बहुत ही वधिया तरीके दे नाल निभाया हैगा, पर मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी ते हुण इमेजिन करदे आ जे श्रीदेवी हुंदी तां किस तरह दे लगनी सी इह फिल्म।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
2: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
6: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं. निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं.

0: मिक्सिंग इन द हाउस।
1: हाँ जी वेला तो हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का थोड़ा टाटा बाय बाय कहने का, पर देखो हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फिल्म थानू दसनी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजैक्ट की थी। उस फिल्म जी बहुत ही खूबसूरत जी फिल्म बेटा। जी हाँ इस मूवी दे लई मेकर्स दी पहली पसंद श्रीदेवी सी। श्रीदेवी ने जदों मना करता सी ना तो बाद दे विच इस फिल्म दे विच माधुरी दीक्षित नू कास्ट किया गया सी ते उन्हां दे हिस्से चले गए ते उन्हां दी जोड़ी अनिल कपूर दे नाल हिट भी साबित हुई क्योंकि इस तों पहलां तक तां अनिल कपूर दे नाल जोड़ी हैगी है जिहड़ी उह श्रीदेवी दी काफी ज्यादा पसंद की जाती सी। ते देखो ये सारियां फिल्मां हैगियां ने जिहड़ियां श्रीदेवी ने रिजैक्ट करतीआं। हुण तुसीं इंज करो कि दसो कि कहड़ी फिल्म तुसीं चाहुंदे हो या तुहानूं लगता है कि काश फिल्म दे विच श्रीदेवी नू कास्ट किया जाता तो यह फिल्म बहुत ज्यादा सोहनी होनी सी, है ना। दसो दसो फटाफट देना रेडियो ब्रिसोनी 107.1 साडा फेसबुक पेज है जिथे ब्रिसोनी@ब्रिसोनी.com साडी ईमेल आई डी है जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा होए अपनाओ साडे नाल गल्लां बातां जरूर करते रहा करो, है ना। तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो। बाकी मैं तो यही कहना है जी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। कल मिलते हैं, करते मुलाकात। सत श्री अकाल।

0: मुंह।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
4: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
5: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
4: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
5: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend, or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
6: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
7: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
6: ऐसा क्या खास है वहाँ?
7: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
6: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
7: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
2: हाय, मैं मुख्तार बाशा, ओनर मैनेजर बैंक ऑफ क्वींसलैंड आकाशिया रिज। बड़ी बैंक्स के साथ अक्सर एक परेशानी रहती है, आप कभी भी एक व्यक्ति से दो बार बात कर ही नहीं पाते। बट एट बैंक ऑफ क्वींसलैंड हम समझते हैं कि आप एक ही व्यक्ति के साथ डील करना पसंद करेंगे, खास करके जब बात हो होम लोन जैसे इम्पोर्टेंट मैटर की। इसलिए एप्लीकेशन से लेकर परचेस और सेटलमेंट तक हर एक स्टेप पर आपके साथ एक ही पर्सन होगा। हम यहाँ इंडियन लोकल कम्युनिटी को उनकी सभी तरह की बैंकिंग जरूरतों के लिए सपोर्ट करने के लिए हैं, और इस काम में हमारे साथ हैं हमारी भरोसेमंद मोबाइल लेंडर्स। हमारे पास बाइलिंगुअल स्पेशलिस्ट्स हैं, और अगर आप हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं तो हम आपके पास आएंगे कहीं भी कभी भी। अगर आप खरीदने या रीफाइनेंस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज ही आइए बैंक ऑफ क्वींसलैंड आकाशिया रिज, या कॉल करें पंडित ललीन ऑन 0451-538-437, ब्रांच नंबर 3336100। इट्स पॉसिबल टू लव अ बैंक, लेट अस प्रूव इट। बैंक ऑफ क्वींसलैंड लिमिटेड, ABN 3200965, ऑस्ट्रेलियन क्रेडिट लाइसेंस 244616, टर्म्स एंड कंडीशंस इन ब्रांच फीस चार्जेस एंड क्रेडिट असेसमेंट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
5: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़

0: चलते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें। मौसम के बारे में पहले से पता करें। कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे, बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
5: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, कैसा फील कर रहे हैं आज आप? कैसा है आज आपका मूड? दुरुस्त है, अच्छा है या ठीक ठीक है? जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि अगर ठीक ठीक है तो बहुत ही मजेदार हम करने आ गए हैं। निविया शर्मा यहाँ आ गई है, इवनिंग वाइब लेकर आ गई है। आप खुद ही सोच लीजिए कैसे आपका मूड खराब रह सकता है, कैसे आपको स्ट्रेस हो सकता है। अगर है भी तो वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि हम आपके साथ बहुत सारी गपशप, बहुत सारे खूबसूरत गाने और बहुत सारी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जी हाँ, जल्दी से आ जाइए, क्योंकि प्रोग्राम हो रहा है शुरू। और आपको तो पता ही है, और इन केस आपको नहीं भी है पता, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी रिचुअल के साथ। और ये हेल्दी रिचुअल है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। हमें काम फील करवाता है, हमें फोकस्ड बनाता है, हमें स्ट्रेस मुक्त करता है। सो आइए सबसे पहले लंबी गहरी सांसों के साथ करते हैं स्वागत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और इससे भी ज्यादा अच्छा फील हो जाएगा जब हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से आ जाइए, क्योंकि मैं पहला जो गाना प्ले करने वाली हूँ वो बहुत ही मजेदार है, ईडी शरान का सफायर। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा तुम्हें आज ईडी शरान की याद कहां से आ गई? ईडी शरान की याद मुझे इसलिए आई है, एड शरान की मुझे इसलिए याद आई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला गाना जो है ना वो बहुत ही मजेदार है। सबसे बड़ी बात है इसमें मजेदार तो बोल है ही, लेकिन वाइब भी है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आ जाइए, और ये वाला जो गाना है वो आपको मस्ती वाले माहौल में लेकर जाएगा, आपको यू नो व्हाट वाइब करने पर मजबूर कर देगा।

0: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा मौसम की ओर। आपको तो पता ही है, प्रोग्राम के शुरुआत में हम सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में, फिर आपकी फरमाइशों के बारे में, और फिर धीरे धीरे हम आगे की गपशप, आगे की इन्फॉर्मेशन और आगे के बहुत सारे खूबसूरत गाने आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन पहले होती है बात मौसम के बारे में, टेम्परेचर क्या कह रहा है, कैसा मूड है, क्योंकि लेट्स बी रियल, मौसम का जो मूड है वो हमारे मूड को भी डिसाइड करता है किसी हद तक। तो सबसे पहले आज की बात करते हैं 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, अभर की अगर बात की जाए तो 23.9 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर। फील आपको हो रहा है 22.5 डिग्री सेल्सियस के करीब। वहीं रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का सबसे कम टेम्परेचर जो ये ठंडक बढ़ने के बाद है रात में, वो आज ही देखा जाएगा। 14 डिग्री सेल्सियस मतलब ठंड आप अच्छी खासी फील करने वाले हैं। जी हाँ, और इसी के साथ अगर बात की जाए एयर क्वालिटी की, तो एयर क्वालिटी है एकदम मजेदार, मतलब फेयर। और वहीं बात की जाए अगर बारिश की, बारिश का क्या हाल है, क्या मूड है, तो बारिश जो है वो लगी हुई है, और अगर आपके इलाके में नहीं भी हो रही है तो कहीं और तो डेफिनेटली हो रही है, और ये रात के 11 बजे तक जो है वो चलती रहेगी। मतलब जहां जहां पे हो रही है, थोड़ी सी हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है, बीच बीच में हो रही है, ये ऐसे ही चलता रहेगा रात के 11 बजे तक। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे ये कम होगी, बट उसमें भी बीच में इसके होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। लेकिन मोस्टली सनी आज है सिचुएशन, और जो बारिश है वो अगेन थोड़ी थोड़ी ही है, और वो कहीं कहीं पर ही है। इसी के साथ ये तो है आज का हाल। लेकिन अगर थर्सडे की बात की जाए, मतलब कि कल की, तो 24 डिग्री सेल्सियस के साथ टेम्परेचर के साथ 30% चांसेस हैं बारिश के, विच इज लाइक ऑलमोस्ट ना के बराबर, बट फिर भी एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि मूड जो है वो बारिश का, बादल का, मौसम का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली श्योर शॉट कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये मौसम है भाई, अपनी ही अदा से चलता है। और इसी के साथ फ्राइडे की अगर बात की जाए तो 20% चांसेस मोस्टली सनी सिचुएशन रहेगी और 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। लेकिन सैटरडे को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिर से होने वाला है, मतलब थोड़ी सी गर्माहट बढ़ेगी। लेकिन उसके पहले अभी मुझे जो दिख रहा है वो थोड़ी बहुत बारिश, बिल्कुल ना के बराबर, बट 24 डिग्री सेल्सियस एंड 23 डिग्री सेल्सियस के करीब मुझे टेम्परेचर अगले 2 दिन के लिए भी यहां पर नजर आ रहा है। सो एज सच आपको बारिश के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बाकी कल आपको हम बता ही देंगे क्या हाल है और कैसा होने वाला है आगे के दिनों का हाल। इसी के साथ ये है मौसम का हाल, जो कि बिल्कुल भी नहीं है बेहाल। और अब हम चलते हैं अपनी चाल। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा फिर से तुम्हारी ये फर्जी शायरी शुरू होगी। चलिए ठीक है, अगर आप कहते हैं तो नहीं कहती हूँ, यहाँ पर जाते हैं एक और गाना आपको सुनाते हैं।
1: जरा रुक जा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
3: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों यहाँ पर ये सफर की शुरुआत तो हो चुकी है इवनिंग वाइब का। वाइब पूरी तरह से हम क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन इसमें अगर आपका साथ मिल जाए तो बात बन जाए। जी हाँ, मतलब सिंपल है, मतलब बिल्कुल साफ है, मतलब बिल्कुल सिंपल है। आपको फरमाइशें करनी है और वही फरमाइशें करनी है जिन गानों को आप बहुत ही पसंद करते हो, वो आपको बहुत ही ज्यादा अजीज है, बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है, उन गानों को लेकर आ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए उन गानों को प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी अब बहुत ही सिंपल है, आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, नंबर है +91828887107। आई रिपीट, +91828887107। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा मजेदार सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे बड़ी ही रिलेटेबल बात करने वाली हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा। और ये बात मैं उनसे ज्यादा करने वाली हूँ जो कि अभी मेरे यंग लिसनर्स हैं या जो अपनी मॉम पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड करते हैं। जी हाँ, अब आप लोगों को तो पता ही है कि आपकी आरजे निविया भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में आती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी आप किचन में जाते हो कुछ बनाने के लिए, बट देन यू आर लाइक कि ओके इसमें नमक ठीक है, इसमें बाकी सारी चीजें ठीक है, आपने ये सही तरीके से बनाया, मैंने ये सही तरीके से बनाया है, और फिर आप अपनी मम्मी को बुलाते हो मॉमी मॉमी मॉमी मॉमी, और बेचारी मॉमी जो कि हमेशा ऐसे किचन में ही दिखती हैं, और जब आप उनको सुकून की सांस दे ही देते हो और आप बोलते हो कि नहीं नहीं आज हम कुछ आपके लिए बनाएंगे, उसमें भी आप मॉमी मॉमी मॉमी मॉमी करते हो, और वो जो मम्मी आती है और वो आपको ऐसे देखते हैं, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती बेटा, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जरूर मुझे बताइएगा। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भी बार बार अपनी मॉम को बुलाकर वैलिडिटी लेने की आदत है? मतलब आई थिंक इट इज अ गर्ल थिंग, इट्स नॉट अ बॉय थिंग। सो मुझे लगता है मेरी फीमेल लिसनर्स जो है वो कहीं ना कहीं एग्री करेंगी इससे, क्योंकि लेट्स बी रियल, इवन इफ वी आर अडल्ट, माय मदर एंड आर मदर्स आर अडल्ट प्रो मैक्स। जी हाँ, अगर हम अडल्ट हैं तो मदर्स जो है हमारी वो तो अडल्ट प्रो मैक्स हैं, सो ऑफकोर्स वी नीड वैलिडेशन। क्या हमने ये खाना अच्छा बनाया है, क्या इसमें सब कुछ ठीक है, क्या ये चाय पूरी हो जाएगी, क्या ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जरूर मुझे बताइएगा अगर आप भी ऐसे ही करते हो मेरी तरह मॉमी मॉमी मॉमी। और फिर मॉमी बोलती हैं इससे तो अच्छा बेटा मैं खुद ही कर लेती। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
2: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अ टन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नीबा के साथ। दोस्तों, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को आइसक्रीम कितनी पसंद है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट जवाब होंगे। किसी को आइसक्रीम पसंद होगी, किसी को आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद होगी, किसी को आइसक्रीम बहुत बहुत बहुत ज्यादा पसंद होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितनी भी ज्यादा आइसक्रीम पसंद है, आप उसके लिए कितना स्पेंड करने के लिए तैयार हूं, तो आपका जवाब क्या होगा? वेल, सोचिए सोचिए सोचिए, क्योंकि आप जो मैं आपको बताने वाली हूं उसके बाद आपको ऐसा लगेगा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निविया। जी हाँ, आपको ऐसा ही लगने वाला है। सो, एक आइसक्रीम है जो कि जापानीज आइसक्रीम है और जापानीज ब्रांड की ही आइसक्रीम है, उसका एक स्कूप $5,000 से ज्यादा महंगा है। या माइंड यू, $5,000 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट US डॉलर। जी हाँ, और इतने नहीं, इससे ज्यादा का है, मतलब 5.3 या 5.4 जो है वो $1,000 का है। और आप लोग बोलोगे कि ये कौन सी आइसक्रीम है और इसे कौन खा रहा है? वेल, ऑफकोर्स इसे अंबानी टाइप लोग ही खा रहे होंगे, और कौन खाएगा। जी हाँ, सो यहाँ पर आपको मैं बता दूं पहले इस आइसक्रीम के बारे में क्या है इसमें खास। सो, इसका एक स्कूप जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम रुपयों की बात करें तो 5 लाख रुपए तक का है। और या यस, एग्जैक्टली, अमेजिंगली लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। जी हाँ, सो मीट ब्याकुआ। जी हाँ, ब्याकुआ, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो ये है ब्याकुआ, जो लग्जरी आइसक्रीम है जापानी ब्रांड केलाटो की। जी हाँ, केलाटो की ये आइसक्रीम है, ब्रांड का नाम है केलाटो और उनकी आइसक्रीम है ये, और इसका नाम है ब्याकुआ। जी हाँ, और ऑफिशियली इसे रिकग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम के तौर पर। जी हाँ, वेल ऑफकोर्स अगर $5,000 से ज्यादा की है, $5,500 की है या $6,000 तक की आइसक्रीम है, तो ऑफकोर्स ये सबसे महंगी आइसक्रीम हुई, राइट। और इसी के साथ, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें ऑफकोर्स अब इतनी महंगी आइसक्रीम है तो इसे कोई नॉर्मल से इंग्रेडिएंट से तो नहीं बनाया गया होगा। आप लोग बोलोगे कि कितने भी महंगे इंग्रेडिएंट्स होंगे निविया, कितने ही महंगे हो सकते हैं, मतलब कितने ही, $6,000 और $5,500 की आइसक्रीम का स्कूप, लाइक कितना ही महंगे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल सकते हैं। जी हां, सो मैं आपको बता दूं कि इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, और इसमें रेयर से एक रेजिड्यू, लग्जरी चीज, एडिबल गोल्ड लीफ, शेफ क्राफ्टर प्रेजेंटेशन, ये सब आपको मिलता है। और ये सब आपको अगर चाहिए तो आपको खर्चने पड़ेंगे $5,500 से $6,000 तक। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा हम अपनी नॉर्मल आइसक्रीम के साथ ही बढ़े हैं, मतलब हमको जो आइसक्रीम पसंद है उससे वही अच्छी है, हमको नहीं चखनी है इतनी महंगी आइसक्रीम को, एक मतलब हमारा भेजा हिल गया है कि हम इतनी आइसक्रीम महंगी खाएंगे। बट यहाँ पर लोग आइसक्रीम के लिए पैसे नहीं देते हैं। जी हाँ, माइंड यू यहाँ पर क्या है सिचुएशन, मैं हमेशा बात करती हूँ कंज्यूमरिज्म की, और यहाँ पे भी वही वाली सिचुएशन है। सो द आइडिया इज इन जस्ट डेजर्ट, इट्स एक्सक्लूसिविटी, क्राफ्टमैनशिप एंड लग्जरी टर्न्ड इनटू एक्सपीरियंस। सो ये सारी की सारी चीजें जब आपको सर्व की जाती है, मतलब या इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेजर्ट, इट्स अबाउट एक्सक्लूसिविटी, क्राफ्टमैनशिप और लग्जरी को जब टर्न कर दिया जाता है एक्सपीरियंस में, उसके पैसे यहां पर लिए जाएंगे। क्योंकि ऑफकोर्स खाने की चीजों का कितना ही महंगा हो सकता है, वेल ऑफकोर्स अगर जापान की अगर बात करें तो जापान हमेशा हर एक चीज का सबसे महंगा वर्जन मार्केट में उतारने के लिए हमेशा से फेमस है। उनके मैंगो सबसे ज्यादा फेमस है महंगे, उनका तरबूज सबसे महंगा है, उनका मतलब क्या क्या उनका सबसे महंगा नहीं है। जी हाँ, सो यहाँ पर आइसक्रीम भी सबसे महंगी जो आती है वो वहीं से आती है। इसी के साथ आपको एक और बात तो नहीं याद आ गई, कहीं आपको वो कॉफी तो नहीं याद आ गई जो कि $1,000 की कॉफी है और आपको वो दुबई में मिलती है। या आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, जापान ही नहीं, यहाँ पर दुबई भी इसमें पीछे नहीं है। जी हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, यू नो $5,500 और $6,000 की आइसक्रीम का स्कूप, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, डू यू रियली वांट टू ट्राई इट? अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो भी क्या आप इसे ट्राई करोगे? लेट मी नो। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से नहीं है, ये गाना है फरमाइशी गीत हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। गाने का नाम है जीवन में पिया तेरा साथ, और ये है गूंज उठी शहनाई का गाना। थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माय मेल लिसनर्स, तो एलन मस्क ने कहा है कि इंस्टाग्राम इज फॉर गर्ल्स नॉट फॉर बॉयज। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। सो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन ने कह दिया है कि यू नो व्हाट, इंस्टाग्राम इज फॉर गर्ल्स। वो बंदों के लिए थोड़ी है, वो गर्ल्स के लिए। मतलब आपने उसमें जितना भी मटीरियल देखा है, जितना भी कॉन्टेंट देखा है, वो आपको ऐसा लगता है कि वो गर्ल्स के लिए बना है। अब ऑफकोर्स बहुत सारे लोग उनके पीछे लग गए, लिटरली उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगा ली इस बोल के। और आप लोग बोलोगे पूंछ में आग लगा ली, आई मीन वही वाली सिचुएशन हो जाती है ना, मतलब आप खुद ही अपना काम खराब कर लेते हो। फिर लोग उनको बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम जो है वो लड़कियों के लिए और एक्स जो है वो सबके लिए। वेल ऑफकोर्स एक्स के तो वो ओनर भी हैं, तो इंस्टाग्राम की वो बुराई कर रहे थे और एक्स की वो बड़ाई कर रहे होते हैं, वो बड़े ही मजेदार तरीके से। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको भी लगता है कि इंस्टाग्राम जो है वो लड़कियों के लिए है, या फिर आपको लगता है कि नहीं इंस्टाग्राम सब चला सकते हैं? और क्या आपको पता है कि 8 मई से इंस्टाग्राम ने अपनी जो प्रिवेसी पॉलिसीज हैं उनको चेंज कर दिया? आई होप आपने उन्हें रीड कर लिया होगा। लेकिन आपको मोटा माटी बात अगर बतानी हो तो मैं बता दूं कि अब जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं, मतलब जो इंस्टा डीएम्स हैं, वो प्राइवेट नहीं बचे हैं। अब उसको इंस्टाग्राम रीड कर सकता है और साथ में वो बाकी सारी एडवर्टीजमेंट कंपनीज को भी भेज सकता है जिनके वो काम आ सकते हैं। सो अगर आपको कुछ भी प्राइवेट बोलना है, कुछ भी ऐसा आप बोलना चाहते हो जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव है और आप नहीं चाहते कि कोई भी पढ़े आपके और रिसीवर के अलावा, तो डोंट यूज इंस्टाग्राम, क्योंकि 8 ऑफ मई से इंस्टाग्राम ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज जो है वो चेंज कर दी है। वेल आई विल नॉट से कि इंस्टाग्राम इज फॉर ओनली फॉर गर्ल्स, बट इतना तो मैं कहूंगी कि ये वाली पॉलिसी चेंज करके उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। सो या यूज व्हाट्सएप फॉर दैट, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो अभी भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इंस्टाग्राम भी होता था 8 मई से पहले, लेकिन अब वो नहीं है। सो एलन मस्क, आई एम नॉट गोना से कि या इंस्टाग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इंस्टाग्राम गड़बड़ तो डेफिनेटली कर रहा है। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
9: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
12: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
13: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
12: अच्छा, वो क्या?
13: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
12: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
13: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
12: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
14: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
12: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
14: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
15: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
16: तो ओम्सॉर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
15: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
16: अरे, ओम्सॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
15: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
16: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
15: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
16: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है, भारत में नंबर +91 8448381360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
17: ओम्सॉर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इससे पहले हम किसी और चीज के बारे में बात करें, एक चीज के बारे में मुझे डेफिनेटली बात करनी है। सो भारत यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आइलैंडिंग कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अपने टूर पे थे, और इस टूर के बाद उन्होंने एक फोटो अपलोड की है सोशल मीडिया पर। वेल, ऑफकोर्स आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, बट आई एम गोना टॉक अबाउट द दूसरा वाला एंगल ऑफ इट. जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि क्या हो गया निविया. वेल उन्होंने एक फोटो डाली है जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ है. आप लोग बोलोगे कि ओ रियली, एंड व्हाई वी आर सेइंग ओ रियली, क्योंकि अपेरेंटली जब जब ये दोनों लीडर्स एक साथ आए, जो कि बहुत ही बड़े लीडर्स हैं, लाइक लिटरली सुप्रीम लीडर्स की तरह है दोनों कंट्रीज के, यहां पर फैंस जो है इनके वो अलग ही एंगल, एक रोमांटिक एंगल निकाल देते हैं इसमें से. जी हाँ, बेचारी जॉर्जिया मेलोनी के लिए मुझे कभी कभी बहुत तरस आता है, बहुत बुरा फील होता है कि वो हर किसी के साथ उनका जो है वो यू नो रोमांटिक एंगल बना देते हैं, कभी इमैनुअल मैक्रों के साथ, कभी एलन मस्क के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ. एंड शी इज लाइक, यू नो व्हाट, आई एम अ पॉलिटिकल फिगर एंड आई एम हियर टू डू द पॉलिटिक्स. जी हाँ, नॉट एनीथिंग एल्स. बट यहां पर मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के फैंस तो इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि क्या ही कहा जाए. मतलब 2 घंटे हुए थे इस पिक्चर को अपलोड किए हुए सोशल मीडिया पर, ये इतनी ज्यादा वायरल हो गई, मतलब 2 मिलियन लाइक्स ऑलमोस्ट जो है वो मिल गए हैं. और अगर सारे ग्रुप में बात करें, पूरे सोशल मीडिया के पूरी एंटायरली अगर हम बात करें, तो ऑलरेडी 2 से 3 मिलियन व्यूज नहीं मैं बता रही हूं, मैं लाइक्स बता रही हूं, मतलब लोग बहुत कितना कुछ लिख रहे हैं. और कमेंट्स की अगर बात करें तो कमेंट्स में तो लोग और भी आगे निकल गए हैं. बेस्ट कपल, कपल गोल्स विद द हार्ट इमोजी. जी हाँ, कपल हो तो ऐसा. जी हाँ, ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं. भाई ये दोनों कपल नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को कपल बनाने की पड़ी हुई है इनकी. अब मैं अगर एज गैप की ही बात करूं तो एज गैप भी इतना ज्यादा खतरनाक है इन दोनों का, लेकिन फिर भी लोग अपनी ही मतलब प्यार की पींगे बढ़ाते रहते हैं लिटरली. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर. और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है. इनफैक्ट जॉर्जिया मेलोनी अब टीज करती है लोगों को, जब भी वो दोनों मिलते हैं तो वो टीज करने के लिए 2-4 सेल्फीज तो जरूर डालते हैं. दे आर लाइक कि ओके, अगर आप हमें इतना ही प्रोत्साहित कर रहे हो ये सब करने के लिए, तो लो एक और फोटो लो, 2 और फोटो लो, 3 और फोटो लो. एंड यू नो व्हाट, शी इज लाइक ओके, तुमको खेलना है, तुमको मजे लेने हैं, तुम और मजे लो. जी हाँ, एंड ऐसे ही जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो है वो उन्होंने पिक्चर्स जो है वो अपलोड की. अभी थोड़े ही घंटे हुए हैं, 3 घंटे हुए हैं ऑलमोस्ट, और उस पे ही वो फोटोज जो है इतनी वायरल हो गई. वहीं पर जॉर्जिया मेलोनी ने भी अपने हैंडल पे डाली है, वेलकम बैक माई फ्रेंड. जी हाँ, ऐसा कुछ कैप्शन करके उन्होंने डाली हुई है. अब यहां पर लोग फ्रेंड तक नहीं छोड़ रहे हैं, लोग तो कुछ और ही रोमांटिक एंगल निकाल रहे हैं. मैं इतना कहूंगी, इस दुनिया में ना लोगों की जुबान को, उनके दिमाग को कोई नहीं रोक सकता. मतलब इतने बड़े बड़े लीडर्स को ये लोग नहीं छोड़ते, बाकी लोगों का क्या होगा. जी हाँ, मतलब मोदी और जॉर्जिया मेलोनी, इनको कपल बना दिया. जी हाँ, यहाँ पर एक और मतलब मैं अभी भी ये बोलना चाहूंगी कि शुक्र है कोई आंटियां मिलके उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को रिश्ता नहीं भिजवा दिया, बिकॉज इंडियन आंटीज कैन लिटरली डू दिस, लिटरली. आई होप मोदी जी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि बाकी केसेस में तो ऐसा हो जाता है, यू नो दैट वेरी वेल. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे बड़े बड़े लीडर्स को रोमांटिक एंगल में लिया जा रहा है, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं और जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री, उन दोनों को रोमांटिक एंगल में लिया जा रहा है और वो अभी नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई कि दुनिया में लड़ाई चल रही है, बॉम्ब गिर रहे हैं इधर से उधर और लोगों को अपनी ही मस्ती पड़ी हुई है। जी हाँ, और दूसरे शब्दों में कहा जाए, आग लगी बस्ती में हम तो रहेंगे अपनी मस्ती में। जी हाँ, लोग लिटरली बहुत ज्यादा फनी है। इसी के साथ यहाँ पर बिना देर करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फरमाइश प्ले करने का वक्त आ गया है और ये फरमाइश आई है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से। जी हाँ, गाने का नाम है मेरे महबूब तेरे दम से। रफी साहब की खूबसूरत आवाज में ये गाना आपको सुनने को मिलेगा और थैंक यू सो मच विशाल जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए। बिल्कुल देर किए बिना ये हम गाना आपके लिए प्ले करेंगे। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। ये रहा आपका ये पसंदीदा गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा ऑफकोर्स खबरों की दुनिया की तरफ। दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करने का वक्त हो गया है। पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है, कौन से देश की सरकार क्या कर रही है, आइए जरा जानते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है बहुत कुछ चल रहा है, फिर चाहे वो अमेरिका इसराइल ईरान वॉर का फ्रंट हो या फिर भारत हो या फिर जो है बाकी की सारी कंट्रीज हो, बहुत कुछ जो है वो चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पर एक खबर से जो कि है अगेन यहां पर ईरान युद्ध के बारे में। ईरान युद्ध को खत्म करने पर शी जिनपिंग ने दिया 4 सूत्रीय प्रस्ताव। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि मध्य पूर्व की स्थिति एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, अब ये युद्ध से शांति की ओर बढ़ने के दौर में है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि इस संघर्ष को समाप्त करना बेहद जरूरी है, दोबारा युद्ध शुरू होना मंजूर नहीं किया जा सकता। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए मेरा 4 सूत्रीय प्रस्ताव है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहमति को मजबूती मिलेगी, तनाव कम होगा, संघर्ष घटेगा और शांति को बढ़ावा मिलेगा। शी जिनपिंग का ये 4 सूत्रीय प्रस्ताव पिछले महीने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ उनकी बैठक के दौरान सामने आया था। इसमें शांतिपूर्ण से अस्तित्व, राष्ट्रीय संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और विकास और सुरक्षा के बीच समन्वित दृष्टिकोण पर भी जोर दिया गया है।

जी हाँ दोस्तों, वहीं इसी के साथ अब जरा अगर बात की जाए लेबनान और इसराइल की, तो लेबनान पर इसराइली हमलों में 19 लोगों की मौत हुई। पिछले हफ्ते हुआ था सीज फायर बढ़ने का ऐलान। जी हाँ, इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिण लेबनान में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में 10 लोग एक ही हमले में मारे गए। इस हमले में देर कनौन कस्बे में एक घर को निशाना बनाया गया। मृतकों के 3 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल भी हैं। जी हाँ, लेबनान 2 मार्च को इस युद्ध में शामिल हुआ था जब ईरान समर्थित शिया इस्लामी संगठन हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट दागे थे। यह हमला अमेरिका और इसराइल की उस संयुक्त कार्रवाई के जवाब में किया गया था जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हो गई थी। ये ताजा मौतें उस घोषणा के 1 सप्ताह से भी कम समय बाद हुई हैं जिसमें अमेरिका ने कहा था कि लेबनान और इसराइल 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों के बीच जून की शुरुआत में फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। वहीं युद्ध विराम बढ़ाए जाने के बावजूद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच लगातार गोलीबारी जारी है, खासकर दक्षिणी लेबनान में। इसी के साथ यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना, और गाना से ज्यादा मैं कहूंगी ये गजल है। जी हाँ, ये खूबसूरत सी गजल है एसबी जॉन की, तू जो नहीं है। और अगेन ये एक फरमाइशी गीत है जो कि डेडिकेट किया गया है, जी हाँ, मेरी बहुत ही खास लिसनर की तरफ से। सो थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें, या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों वहीं इस साल की पहली विदेश यात्रा पर पुतिन चीन पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, खबरों की बात हो रही है, और वहीं रूस और चाइना में फिर से मुलाकातें शुरू हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया यात्रा के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शिखर वार्ता करेंगे। इस साल पुतिन की ये पहली विदेश यात्रा है। इससे भी पता चलता है कि मौजूदा माहौल में चीन कितना अहम बन गया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार और उसका प्रमुख सहयोगी बना हुआ है। व्लादिमीर पुतिन इस संबंध को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बैठक में उस नई गैस पाइपलाइन पर खास फोकस होगा जो हर साल 50 अरब क्यूबिक मीटर तक नेचुरल गैस चीन तक पहुंचा सकती है। हाल के महीनों में कई वैश्विक नेता व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के मकसद से चीन का दौरा कर चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन भी इस कड़ी में शामिल हो गए हैं।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में पीएम नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे। जी हाँ, क्या है एजेंडा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में मंगलवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे। प्रधानमंत्री इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तरेला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी वो कर रहे हैं। कई अन्य राजनयिक कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा ले रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस यात्रा का ब्यौरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, मैं इटली की राजधानी रोम पहुंच चुका हूं। यहां मैं राष्ट्रपति सर्गियो मत्तरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करूंगा और उनका साथ कई मुद्दों पर चर्चा करूंगा। इस यात्रा का मुख्य फोकस भारत और इटली के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर होगा, खासतौर पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी कि आईएमईसी पर, साथ ही संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025 से लेकर 29 की भी समीक्षा की जाएगी। मोदी ने लिखा कि मैं संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय का भी दौरा करूंगा। ये बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। दूसरी ओर इटली की पीएम प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जून 2026 में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे थे।

जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ कल ही की बात है, मैंने एक मीम देखा और उसमें जो लिखा हुआ था वो बहुत ही फनी था, लेकिन पते की बात थी, तो मैंने सोचा कि इसे शेयर किया जाए मेरे लिसनर्स के साथ। और ऑफ कोर्स ये मेरे मेल लिसनर्स के लिए है, मेरी फीमेल लिसनर्स के लिए नहीं है। क्यों ये मेरी फीमेल लिसनर्स के लिए नहीं है और क्यों ये मेरे मेल लिसनर्स के लिए है, आप ध्यान से सुनिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो उसमें लिखा हुआ था कि इफ योर वाइफ एवर सेज डू व्हाट यू वांट, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, इफ योर वाइफ एवर सेज डू व्हाट यू वांट, इसका मतलब है डू नॉट डू व्हाट यू वांट। जी हाँ, और साथ में साइरन्स भी बने हुए हैं, मतलब अगर वो बोल रही है कि डू व्हाट यू वांट तो आपको बिल्कुल डू नॉट व्हाट यू वांट करना है। जी हाँ, जो आप करना चाहते हो वो बिल्कुल मत कीजिए। स्टैंड स्टिल, डोंट ब्रीथ, अवेट फर्दर इंस्ट्रक्शंस, या दैट्स व्हाट शी मींस। जी हाँ, मतलब वो बोलती है कि डू व्हाट यू वांट, पर उनका मतलब ये नहीं होता है कि डू नॉट डू व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, उनका मतलब होता है डू नॉट डू व्हाट यू वांट, उनका मतलब होता है स्टैंड स्टिल, डोंट ब्रीथ, अवेट फर्दर इंस्ट्रक्शंस। जी हाँ, दैट्स व्हाट शी मींस। और आगे से कभी भी अगर वो आपको ये बोले डू व्हाट यू वांट तो गलती मत कीजिएगा, फिर आप बोलते हो कि मुझे समझ नहीं आया कि उसका मूड क्यों खराब हो गया, मुझे समझ नहीं आया मैंने गड़बड़ क्या की। यही तो गड़बड़ की, वो जो बोल रही थी उसका मतलब वो नहीं था जो वो बोल रही थी, उनका मतलब वो था जो वो नहीं बोल रही थी लेकिन वो फिर भी वो बोलना चाहती थी। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वेल समझदार को इशारा काफी, मैंने आपको बचा लिया आगे के बहुत सारे कलेशों से। सो थैंक मी लेटर। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ मुझे इतना समझ आ गया है कि इंसान इस दुनिया में हड़कंप मचाने के लिए आया है। वेल आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे इंसान वैसे ही होते हैं, सारे के सारे ह्यूमंस वैसे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दो ये वाली जो चीज है ना वो मिलती ही है। मतलब हड़कंप मचाना, ऐसी ऐसी अजीबो गरीब चीजें करना कि बाकी क्रीचर्स को डिस्टर्ब करने में बहुत ही मजा आता है। जी हाँ, सो ऐसा ही कुछ हुआ इचिकावा जू में। अब आप लोगों को नहीं पता है कि इचिकावा जू कौन सा जू है, कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि जापान में है इचिकावा जू, जहां पर एक बहुत ही फेमस और वायरल जो है सेलिब्रिटी मॉन्की रहता है, उसका नाम है पंच। इसकी कहानी मैंने आपको बहुत बार सुनाई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। मतलब जितना लुबूबू फेमस हो गया था उससे कहीं ज्यादा पंच फेमस हो गया था। क्यों और या क्या रीजन था, वेल अगेन मैं आपको बताने वाली हूं। सो पंच एक छोटा सा मकाओ मॉन्की था जो कि लिटरली बहुत ही छोटा था, अभी पैदा ही हुआ था, उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया। वेल ऑफकोर्स लिटरली उसे छोड़ दिया, उसे पालने से मना कर दिया। अब वो जू में था तो ऑफकोर्स जू कीपर्स ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वो उसे दूध पिलाते थे, वो उसे खाना खिलाते थे। धीरे धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ, कुछ महीनों का हुआ, तो जू कीपर्स ने सोचा कि इसको अपनी क्रीचर्स में, अपनी स्पीशीज में जो है वो छोड़ा जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये कभी भी अपनी स्पीशीज को पहचान ही नहीं पाएगा। सो उन्होंने उसे छोड़ा, लेकिन उसको छोड़ने से पहले उन्होंने उसे एक प्लस टॉय दिया। जी हाँ, एक ऐसा टॉय जो कि लिटरली उसके काम भी आ सके, उसे अच्छा लग सके और उसका साथ भी दे सके। उसको चूज करने के लिए कहा गया तो उसने एक स्टफ्ड मॉन्की को चूज किया जो कि लिटरली उसी की तरह दिखता था, लेकिन वो टॉय था। उसने उसको अपने साथ रखना शुरू किया। फिर क्या था, जू कीपर्स ने उसे उसकी स्पीशीज में छोड़ दिया, उसके उस वाले जोन में छोड़ दिया जहां पे उसी की स्पीशीज के बाकी सारे मॉन्कीज भी थे। बस अब जब उन्होंने उसे देखा तो उनको लगा कि ये कौन सा आ गया नया का नया अफलातून यहां पर, तो देवर लाइक ओके हमें इसे बुली करना चाहिए। जी हाँ, उसे बुली किया गया, उसे बहुत सारे मॉन्कीज ने बुली किया और फिर वो इतना ज्यादा डर गया उन मॉन्कीज से कि उसने अपने टॉय को लेकर बस अकेले रहना शुरू कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ जू कीपर से मिलता था। जब जू कीपर अंदर आते थे खाना डालने तो वो कहता था कि मुझे इनके पास से ले जाओ। धीरे धीरे धीरे करके वो ऐसे ही करने लग गया, वो मना करता था जाने के लिए। और जब ये सारा का सारा सीन शूट होकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाला तो लोगों ने उसके साथ इतना ज्यादा कनेक्ट किया, लोगों ने उससे इतना ज्यादा प्यार किया, लोगों ने उसके साथ इतना ज्यादा जो है वो सिंपथी फील की कि क्या ही कहा जाए। मतलब वो इतना ज्यादा फेमस हो गया, पीपल आर इन्फ्लुएंसर्स वर लाइक ओके यू नो व्हाट, आई एम गोना गो देयर एंड आई एम गोना लिटरली इवैक्यूएट पंच फ्रॉम दैट सिचुएशन। जी हाँ, एंड इन्फ्लुएंसर्स सच में रेडी थे उसको अडॉप्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो चाह रहे थे कि उसको अडॉप्ट कर लिया जाए, उसको ना रहने दिया जाए उन बुरे मॉन्कीज के साथ। और इचिकावा जू जो कि लिटरली नॉर्मल दिनों में अच्छी खासी जो है वो लोगों को देखता था, अच्छी खासी तादाद में लोगों को देखता था, लेकिन उसके बाद जब से पंच वहां पर फेमस हो गया, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ लगनी शुरू हो गई कि लोग क्रेजी हो गए। मतलब इतने लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे जस्ट वो पंच की झलक देखना चाहते थे। लेकिन अब अब एक नया इंसिडेंट हुआ है। जी हाँ, अब एक नया इंसिडेंट हुआ जहाँ पे पंच को देखने के लिए उसके एरिया में, लिटरली उसके जो केज है उसमें घुसकर दो अमेरिकन उसमें घुस गए उसके पिंजरे में, और फिर उससे मिलने की कोशिश वो कर रहे थे। उन्होंने भी अपने आप को एक बहुत ही बड़े कॉस्ट्यूम में उन्होंने रखा हुआ था, उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, और उसके साथ वो उसमें कूद गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि भाई तुमको बाहर से नहीं दिखता है क्या, तुमको अंदर जाने की क्या जरूरत थी? लिटरली मतलब तुम पंच को देखना चाहते हो, देर आर सो मेनी पीपल जो पंच को देखना चाहते हैं, there is nothing wrong in that, but तुमको अंदर घुस के उनको पूरी तरह से एकदम चौंका देना है, डरा देना है। वो बेचारे बंदर भी ये सोच रहे होंगे कि बंदर हैं तो हम, लेकिन बंदरों वाली हरकत ये कर रहे हैं, लेकिन इंसान हमसे ज्यादा बंदर है। जी हाँ, हम इतने बंदर नहीं है जितना इंसान है। सो यहाँ पर उन दोनों अमेरिकन टूरिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने इतनी खतरनाक और इतनी मतलब क्या ही हरकत है ये, और उसको किया, और उसके बाद उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी कि पंच जो है वो अब अपनी स्पीशीज के साथ अच्छे से रहता है, मतलब अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी उसके साथ सिंपथी फील हो रही है, और अगर आपने स्टोरी को पहले सुना होगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मेरे लिसनर हो और आप सोशल मीडिया चलाते हो तो आपको पंच द मॉन्की के बारे में डेफिनेटली पता होगा। लेकिन अगेन, वो पंच नहीं देख पाए, वो टूरिस्ट जो घुसे हुए थे उस पिंजरे में वो नहीं देख पाए, लेकिन उनको देखकर बंदर सारे पीछे हट रहे थे कि ओके ओके ओके ओके, बट हु इज दैट बंदर? बंदर्स वर लाइक कि हु इज दैट बंदर? या दैट्स व्हाट आई थिंक वो सोच रहे होंगे। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और ना फगली ना अगली, अब हमारा जो सेगमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है, एकदम खूबसूरत है। जी हाँ, सो अब बात हो रही है ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की, क्योंकि ऑफिशियली मेरा ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट शुरू हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है ये सेगमेंट क्या है, किस बारे में है, तो ये है पुराने गानों से भरा हुआ सेगमेंट। मतलब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने प्ले करते हैं, आपको किस्से सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं उस एरा की, जिस एरा में ये खूबसूरत गाने बनते थे। जी हाँ, उन पिक्चर्स की बात करते हैं जिन्होंने हमारे दिलों में नई उमंगें जगाई थी। जी हाँ, सो या अगेन लेट्स जस्ट डू इट, एंड जल्दी से आप भी आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ, क्योंकि आपकी फरमाइशें पुराने गानों से रिलेटेड हैं, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, एंड जल्दी से आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ। इतना सही मैं कहूंगी। यहां पर इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे हम एक बहुत ही खास गाने के साथ, जिसे मैंने नहीं, ना ना ना ना, मैंने नहीं चूज किया है, बल्कि मेरी बहुत ही खास लिस्टनर, माय फेवरेट लिस्टनर प्रेमा आंटी जी ने इस गाने की फरमाइश की है। इस गाने का नाम है चंदा रे मोरी, पतियां ले जा साजन को। जी हाँ, ये गाना जो है ये उन्होंने किया है फरमाइश। थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशों के लिए, खूबसूरत एलिमेंट ऐड करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। एंड उन्होंने एक और चीज कही है, उन्होंने कहा है कि जब ये गाना प्ले होगा तो आई होप लोग जो है वो चांद को देखना नहीं भूलेंगे, बिकॉज इट इज अबाउट चांद। तो मैं कहूंगी ये गाना चल रहा है और अगर कहा गया है तो चांद को जरूर देखिएगा, क्योंकि चांद है खूबसूरत आसमान में।

जी दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शम्मी कपूर के करियर की शुरुआत सही मायने में एक पिक्चर से हुई थी जिसका नाम था तुम सा नहीं देखा। जी हाँ, 1957 में ये मूवी आई थी। इमेजिन कितनी ज्यादा पुरानी है। इसके लिए उन्होंने अपने आप को शेव किया, अपने चेहरे को उन्होंने शेव किया और उसके बाद उन्होंने एक बड़े ही रोमांटिक हीरो के तौर पर जो है वो एंट्री ली। लेकिन इस पिक्चर को खास किन चीजों ने बनाया? वेल ऑफकोर्स इन पिक्चर को खास इसकी कहानी के अलावा इसके गानों ने बनाया। ऐसा कहा जाता है कि इसके सारे के सारे गाने रफी साहब ने गाए थे। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले जब भी गानों की रिकॉर्डिंग होती थी तो जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो धुन सिखाता था, जो गायक था वो गायक ही करता था, वो गाना गाता था और फिर उसके बाद वो जो रिकॉर्डिंग होती थी उसकी टेप लाई जाती थी और फिर फिल्म के सेट पे उसे प्ले किया जाता था और फिर हीरो जो है वो लिप सिंकिंग करता था। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे शम्मी कपूर और रफी साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते थे। ऐसा कहा जाता है कि शम्मी कपूर अपने सभी गानों की रिकॉर्डिंग में स्टूडियो में बैठे होते थे। जी हाँ, वो सब देखते थे कि सिंगर किस तरह से गाना गा रहा है और वो जब सिंगर गा रहा होता था तो उसी के साथ वो वहां पर अपनी अदाएं भी दिखा रहे होते थे। मतलब वो वहां पर रिहर्सल करते थे कि मैं ऐसी ऐसी अदायगी जो है वो करने वाला हूं। मतलब वो डायरेक्ट फिल्म के सेट पर वो अदायगी नहीं करते थे, वो वहीं पर करते थे। और यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, रफी साहब ने पूरे गानों को इतनी खूबसूरती से गाया और ऐसा कहा जाता है कि जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, इस पिक्चर के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो शमी कपूर साहब वहीं पर बैठे हुए थे जहां पर रफी साहब गा रहे थे। अब जब रफी साहब गा रहे थे तो शमी कपूर साहब वहीं पर एक्ट भी कर रहे थे जैसे उन्हें फिल्म के सेट पर करना था और जैसे कि वो ऐसा ही फील कर रहे थे कि वो फिल्म के सेट पर ही थे। जी हाँ, और फिर उसके बाद रफी साहब भी उनको देख रहे थे कि कौन से शब्द पर, कौन सी लाइन पर जो है वो शमी कपूर अपनी गर्दन झटक रहे हैं या फिर घुटनों के बल गिर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें देखकर शमी कपूर की रफी साहब उस ही अंदाज से गाना गाते थे। इमेजिन, मतलब इससे पहले जो है वो गायकी एक्टिंग जो है वो नॉर्मल थी, सिंपल थी। गायक गायकी करेगा, म्यूजिक डायरेक्टर धुन सिखाएगा और गायक गायकी करेगा, गाना गाएगा, उसके बाद टेप को ले जाकर जो है वो प्ले कर दिया जाएगा एंड फिर एक्टिंग हो जाएगी, लिप सिंकिंग हो जाएगी। बट यहां पर पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया एंड इट वॉज 1957। जी हाँ, फिर उसके बाद बाकी तो आप सबको पता ही है। उसके बाद जो सिंगर्स हैं उन्होंने जब गायकी वो करते थे तो उसके बाद एक्टर्स जो है वो वहां पर आकर काफी सारे एक्टर्स ने रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में बैठना शुरू किया। लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी शमी कपूर के द्वारा। लेकिन रफी साहब को भी देखिए, उन्होंने पूरी ही पूरी चीज नोटिस की कि शमी कपूर किस हिसाब से एक्ट करते हैं। उन्होंने उसी हिसाब से अपनी जुबान को भी झटका जहां जहां उन्हें वो झटका देना था उस लाइंस में या उस गाने में। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से। अगेन हमने बात की है तुम सा नहीं देखा की, तो ऑफकोर्स उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो कि टाइटल ट्रैक भी है, वो आपके लिए प्ले कर रही हूं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्शेनिविया के साथ। दोस्तों, यश चोपड़ा ने किसी वक्त ये कहा था कि मैं नया मोहम्मद रफी बना दूंगा। जी, आप लोग बोलोगे कि क्या, मतलब ऐसे कैसे कह सकते हैं यश चोपड़ा की ये मजाल कि रफी साहब के बारे में ऐसा कहा उन्होंने। जी हाँ, लेकिन ये क्यों कहा गया और कैसे कहा गया, आइए जरा आपको इसी के बारे में बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में एक ऐसा भी दौर आया था, हिंदी फिल्म जगत में एक ऐसा भी दौर आया था, जब ऐसा कहा जा रहा था कि अब रफी साहब के गानों के बिना भी फिल्में चलेंगी। जी हाँ, और इसी बात ने एक ऐसे टकराव को जन्म दिया जिसके बाद यश चोपड़ा ने ये बात कही। जी हाँ, यश चोपड़ा चाहते थे कि रफी साहब उनके साथ एक अग्रीमेंट साइन करें जिसमें कि वो उन्हीं की पिक्चरों के लिए गाने गाएं। लेकिन रफी साहब ने ऐसा कोई भी अग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज हर उस दिल के लिए है जो कि इसकी गहराई को और सच्चाई को समझेगा। बस फिर क्या था, उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया और यहां पर यश चोपड़ा ने कह दिया कि अब मैं रफी साहब से गाने नहीं गवाऊंगा, मैं किसी और से गाने गवाऊंगा। फिर क्या था, फिर आई बारी महेंद्र कपूर की। जी हाँ, महेंद्र कपूर से वो अपनी फिल्मों के गाने जो है वो, उनके गीत जो है वो गवाते थे। लेकिन एक वक्त आया जब वो मूवी बना रहे थे, वक्त, जी हाँ वक्त मूवी वो बना रहे थे, और वक्त मूवी का एक गाना था जिसका नाम था वक्त से दिन और रात। अब ऐसे में जब इस गाने को गाने की बारी आई तो जो इसके डायरेक्टर थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि, उन्होंने कह दिया कि देखिए ये बात तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि इस गाने को आप रफी साहब के अलावा किसी से गवा ही नहीं सकते। ये बात उन्होंने यश चोपड़ा को कही जो कि ऑलरेडी टकराव में थे रफी साहब के साथ, क्योंकि रफी साहब ने वो अग्रीमेंट साइन नहीं किया था अपेरेंटली जो वो चाहते थे। अब फिर क्या था, वो महेंद्र कपूर जी से ही अपने गाने गवा रहे थे, लेकिन यहां पर रवि अड़ गए कि ये गाना तो तभी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप चाहते हो ये मूवी अच्छी हो, ये टाइटल ट्रैक अच्छा हो, तो उसके लिए रफी साहब को बुलाइए, क्योंकि रफी साहब के अलावा इस गाने के साथ कोई जस्टिस कर ही नहीं सकता और मैं भी नहीं सोच सकता इस गाने को किसी और से गवाने के बारे में। फिर क्या था, यश साहब ने रफी साहब को बुलाया और यहां पर रफी साहब अगेन हमेशा की तरह कोई भी ईगो के बिना, कोई भी ऐसा सोच के बिना कि इस इंसान ने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है, मैं इस इंसान के लिए क्यों गाऊं, ये कोई सोच नहीं थी। रफी साहब को अपनी आर्ट से प्यार था, वो गाना गाने आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ कहे बिना वो सेट पर आए, स्टूडियो में आए और उसके बाद उन्होंने ये गाना गाया। उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि आपने क्या कहा था, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे और आप फिर से अब मुझसे गाना क्यों गवाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज रफी साहब वॉज रफी साहब। जी हाँ, रफी साहब ने ये गाना गाया और उसके बाद ये गाना लेजेंडरी बन गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रवि ने जब इस गाने की धुन बनाई थी उन्होंने सोच लिया था कि रफी साहब अगर इस गाने को नहीं गाएंगे तो ये गाना मूवी में होगा ही नहीं। जी हाँ, फिर क्या था, रफी साहब ने ये गाना गाया और साथ में यश चोपड़ा जी को भी ये समझ आ गया कि कुछ भी हो जाए, कितना भी समय बीत जाए, रफी साहब को नहीं बनाया जा सकता, एक और रफी साहब को इस दुनिया में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि रफी इज रफी। जी हाँ, यहाँ पर ये गाना जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ वही मैं आपको सुना रही हूँ। गाने का नाम है वक्त से दिन और रात।

0: वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै फेराज।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और अच्छी अच्छी चीजें करते रहिए लाइफ में। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। इसी के साथ ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि है एक बहुत ही खूबसूरत गाना, और इस गाने का नाम है आपके लिए चौधवी का चांद हो। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा तुमको ये गाना बहुत पसंद आ रहा है क्या, मतलब अभी थोड़े दिन पहले भी सुना था। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गाने के साथ मुझे इस प्रोग्राम को एंड करना चाहिए। और चांद से किसको इश्क नहीं है, और इस गाने से भी किसको नहीं है। सो या दैट्स अबाउट इट, मिलते हैं अब आपसे कल। बाय, सी यू, टाटा।

0: का तुम ही शबाब हो, चौदवी का चांद हो।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा
0: का तुम ही शबाब हो, चौदवी का चांद हो।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंड

0: 7035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
7: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
11: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
10: ऐसा क्या खास है वहाँ?
11: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
10: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
11: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक. फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
12: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
13: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
12: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
13: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
12: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
14: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
12: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
13: Yaar, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
12: Meri advice hai, go for the best. Atul Bhardwaj ji hai na, unke paas 12 saal se zyada ka vast experience hai aur law ki intricacies ko handle karne mein unki expertise hai. Criminal law, domestic offense, traffic drug offense mein 12 saal se zyada ka rich experience. Aur to aur conveyance, family law, immigration laws mein bhi Bhardwaj and Associates ke lawyers ka vast experience hai. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
13: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
12: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: मैडम, आई एम योर ओनली एडम।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for...
2: Namaskar. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूँ निविया शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन ओलंपिक्स 2032 संकट, क्वींसलैंड में होटलों और कमरों की भारी कमी। जी हां, साल 2032 में होने वाले ब्रिस्बेन ओलंपिक्स को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। प्रॉपर्टी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की आज जारी रिपोर्ट के मुताबिक क्वींसलैंड में मेहमानों के रुकने के लिए जरूरी कमरों का 25% हिस्सा भी तैयार नहीं हो पा रहा है। वहीं वन नेशन लीडर पॉलिन हैंसन ब्रिस्बेन के बाद अब दूसरे दफ्तर के लिए फंड तलाश रही हैं। क्वींसलैंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। वन नेशन पार्टी की नेता पॉलिन हैंसन, जिनका पहले ही ब्रिस्बेन में एक मुख्य दफ्तर है, अब येपून इलाके में अपना दूसरा इलेक्ट्रोल ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही है, वो भी सरकारी फंडिंग के साथ। इसके साथ ब्रिस्बेन में मौसम का मिजाज बदला, शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। ब्रिस्बेन और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आज देर शाम ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट के कुछ हिस्सों में तेज आंधी तूफान और बारिश देखी जा सकती है। इसी के साथ ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की भारी भीड़, नए डिजिटल गेट्स का ट्रायल शुरू। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह से ही यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सिक्योरिटी और इमिग्रेशन की लाइनों को छोटा करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आज से नए स्मार्ट डिजिटल गेट्स का ट्रायल रन शुरू किया है। वहीं क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ब्रिस्बेन में मेडिकल रिसर्च के लिए मिला बड़ा डोनेशन। ब्रिस्बेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की यात्री

0: जी हाँ, सबसे पहले दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर, पारा 45 पार, सरकार बांटेगी समर किट्स। दिल्ली एनसीआर में आज गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विभाग ने 25 मई तक भीषण हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जाति जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज। आज सुप्रीम कोर्ट ने देश में जाति जनगणना के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रोम, इटली की पीएम मेलोनी से करेंगे मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी अपने चार देशों के यूरोपीय दौरे के आखिरी पड़ाव पर इटली की राजधानी रोम पहुंच चुके हैं। इससे पहले वे नॉर्वे में थे। ऐसे के साथ चंडीगढ़ बना 24/7 घंटे नाइट लाइफ वाला शहर, यानी कि 179 बैंड्स जुड़े। चंडीगढ़ की नाइट लाइफ को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। शहर में अब 24 घंटे कारोबार खुला रखने की अनुमति के बाद मैकडॉनल्ड्स से लेकर ब्लिंकिट जैसे करीबी 179 बड़े ब्रांड्स इस मुहिम से जुड़ गए हैं। इसी के साथ भारत और वियतनाम के बीच रक्षा समझौता, समुद्री सुरक्षा पर फोकस। भारत और वियतनाम ने अपने रक्षा और रणनीतिक रिश्तों को और भी मजबूत करने के लिए हाथ मिला लिया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते का बड़ा बयान, ट्रंप से मांगेंगे और हथियार। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ने आज अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे और भी हथियार मांगेंगे। वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएई न्यूक्लियर प्लांट पर हुए ड्रोन हमले की निंदा की। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस सहित सभी सदस्य देशों ने संयुक्त अरब अमीरात के ब्राक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए ड्रोन हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का पहला भारत दौरा जल्द, नाटो देशों से भी होगी बात। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो जल्द ही अपने भारतीय दौरे पर आने वाले हैं। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार रूबियो पहले नाटो देशों के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद भारत का रुख करेंगे। वहीं इसके साथ अमेरिका में महंगाई के बीच सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी पेमेंट्स की चर्चा। अमेरिका में इस हफ्ते उन नागरिकों के बैंक खातों में सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स आने शुरू हो गए हैं जिनका जन्म 11 से 20 तारीख के बीच हुआ है। इसी के साथ वियतनाम में भयंकर भूकंप की चेतावनी, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी। एशिया के मौसम में आ रहे बदलावों के बीच वियतनाम के तटीय इलाकों में एक बड़ा समुद्री तूफान टकराने की चेतावनी जारी की गई। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले विराट कोहली का बड़ा खुलासा, कप्तानी छोड़ने की असली वजह थी मानसिक और शारीरिक थकान। वहीं ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में 19 साल के ऑलराउंडर ओलिवर पीक को मिला मौका। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में आज एक युवा सितारे की एंट्री हुई है। वहीं आईपीएल 2026 राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच आज भिड़ंत। वहीं फुटबॉल चैंपियंस लीग के फाइनल की तैयारियां तेज, दोनों टीमें पहुंची वेन्यू पर। यूरोपियन फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल मैच बेहद करीब है। वहीं टेनिस फ्रेंच ओपन से पहले स्टार खिलाड़ियों ने शुरू किया वार्म अप टूर्नामेंट। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन की शुरुआत से ठीक पहले दुनिया के टॉप टेनिस खिलाड़ियों ने क्ले कोर्ट पर अपना अभ्यास तेज किया। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात

0: ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें और जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बातें
0: या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे

0: सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331711 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331711। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तों कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उत्ते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असीं बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे, बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, आई एम सो वरीड। एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्रिकेसीज को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
11: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
13: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
14: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
13: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
14: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
13: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यू बॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423 342 272 या फिर सेक्रेटरी।

जिम्मेवारी नहीं ली है पर ईरान ते उन्हां दे सहयोगियां ते शक जताया जा रहा है। इसका मुख्य कारण हुरमुज़ राह तेहरान का कंट्रोल ते ईरान के खिलाफ अमीराती अधिकारियों की तिखी बयानबाजी है। उधर बांग्लादेश के चटकाव में स्थित भारतीय सहायक हाई कमिशन के एक अधिकारी की शकी हालात में मौत होने का मामला सामने आया है। मंगलवार को स्थानक पुलिस ने चटकाव की कुलची इलाके में स्थित भारतीय दफ्तर से एक भारतीय नागरिक की लाश बरामद की। मृतक की पछाण 35 साल नरेंद्र वजो हुई है जो हरियाणा का रहने वाला था। हुण तक दी अहम खबरां विच बस इना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी ते सुझाव देण दे लई तुसी साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी brisoni@brisoni.com। इस नाल ही तुसी साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे जरिए भी जुड़ सकते हो। साडे फेसबुक पेज है रेडियो Brisoni 101 FM। फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लैके। तकली दी इजाजत, सत श्री अकाल।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement. Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: Mixing in the house.

वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.9 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए। देखो बॉलीवुड दे विच ना एक अदाकारा अजिही है कि है जिसनू कदे कोई भुल ही नहीं सकदा। बेशक वो अज साडे विचकार नहीं है पर हमेशा जदों भी स्क्रीन ते आउंदी है ना तो पुरानियां यादां ताज़ियां कर दिंदी है। नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी ने ना बहुत छोटी उम्र विच एक्टिंग दी दुनिया विच कदम रख लिया सी। अपने करियर दे दौरान श्रीदेवी ने सदमा, नगीना, चांदनी, इंग्लिश इंग्लिश मिस्टर इंडिया जा जुदाई चालबाज वर्गियां कई यादगार फिल्मां कीतियां जिन्हां तों उन्हां नूं वक्री पहचान मिली। तां मैं सोचिया कि अज श्रीदेवी दियां कुछ फिल्मां बारे गल करिए पर उन्हां फिल्मां बारे नहीं जिन्हां दे करके ओह फेमस होई क्योंकि ओह फिल्मां तां सब नूं पता ही है कि ने जुबान ते रहिंदियां ने ना जिवें मिस्टर इंडिया हो गई चालबाज हो गई इन्हां नूं किवें भुल सकदा है कोई। हां उन्हां फिल्मां बारे गल करदे हां जिन्हां नूं श्रीदेवी ने रिजैक्ट कर दित्ता सीगा। दस दो तुसीं हैरान रह जाओगे जे तुसीं उन्हां फिल्मां बारे जाणोगे तां। करदी हां तुहानूं हैरान पर पहला सुणो इह गीत।

अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.9 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। इस लिस्ट दे विच सब तो पहला नाम केड़ा आंदा हैगा? केड़ी लिस्ट? उही लिस्ट के श्रीदेवी ने केड़ियां फिल्मां रिजेक्ट कीतियां ने, तां ओह लिस्ट दस रही हां मैं। तां इस रिपोर्ट्स दे विच इस लिस्ट विच सब तो पहला नाम बाहुबली आंदा। रिपोर्ट्स मेरे मुंह चो तां निकलिया क्योंकि रिपोर्ट्स दे आधार ते तां सारी गल करनी हैगी आ। तां देखो मीडिया रिपोर्ट्स दी जे मन्नीए, बहुत सारे लोग वैसे मीडिया दीआं गल्लां नूं सच नहीं मानदे, पर बहुत सारियां उदां ही नहीं करदे हुंदे, सच हुंदियां ने। तां देखो मीडिया रिपोर्ट्स दी मन्नीए तां श्रीदेवी नूं फिल्म बाहुबली विच शिवगामिनी दा रोल ऑफर होया सी। शिवगामिनी दा रोल तो सबनु याद आना, बाहुबली दे विच मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, बाहुबली दी मां दा रोल, पर उन्होंने इस नु मना कर दिता सी ते इह किरदार रामिया कृष्णन दी चोली विच पिया सीगा। है ना, बहुत ही स्ट्रोंग ते बहुत ही सोहना, ते हैरानी हुंदी है ना कि श्रीदेवी ने किवें मना करता सी इस रोल दे लई।

जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल से बने हुए अमिताभ बच्चन दे नाल श्रीदेवी ने बहुत सारियां फिल्मां कीतियां। देखो सवाल थोड़े लिए फिर मैं यही छड़ दिनी हां कि तुसी दसो कि अमिताभ बच्चन दे नाल केड़ियां केड़ियां फिल्मां हैगियां ने जिहड़ियां ओह श्रीदेवी ने कीतियां या केड़ी सब तो ज्यादा हिट रही है, दसो दसो तुसी जवाब दियो। रेडियो बसवाणी 101.1 साडा फेसबुक पेज है bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है, कोई भी जरिया अपना के जवाब दियो। ते मैं हुण इस नाल जुड़ी हुई अगली फिल्म दा नाम दस दिनी आ जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट कीती तां ओह फिल्म सी मुहब्बते। जी हां मेकर्स इस मूवी विच अमिताभ बच्चन दे ऑपोजिट श्रीदेवी नूं लैणा चाहुंदे सी पर उन्होंने उस नूं करन तों मना कर दिता सी। इस फिल्म नूं भी करती सी कोरीना, बाद विच किरदार ही फिल्म तों हटा दिता गया, किसी ने रोल कीता ही नहीं।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। एक फिल्म सी जिसने काजोल नू बहुत वड्डा स्टार बना दिता। शाहरुख खान तो पहला ही स्टार सी के ते इन्हां दी जोड़ी नू इस फिल्म तो बाद कुछ ज्यादा ही पहचान मिली सी। फिल्म का नाम है जी, उस विच शिल्पा शेट्ट भी सी। आ गई ना यार, बिल्कुल सही पहचान है। फिल्म का नाम है जी बाजीगर। इस फिल्म नू भी श्रीदेवी ने करती सी कोरी ना। इस फिल्म विच श्रीदेवी नू डबल रोल ऑफर होया सी पर एक्ट्रेस ने मना कर दिता। फिर जदों उन्होंने मना कर दिता ना तो बाद विच मेकर्स ने फिल्म की कहानी विच बदलाव ही लिया। देखो पर एक चीज तो समझो कि श्रीदेवी दी किड्डी तकड़ी इंपोर्टेंस थी ना कि जिहड़ी फिल्म नू कईआं नू मना करदी सी तां उस दे विचों किरदार ही हटा दिता जांदा सी। बाजीगर दे विचों मुहब्बते दे विचों अगे वी मैं दसदी आं इस बारे, सबर रखो।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

हां जी रेग बफर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 107.1 ते चार छे संदेश अलग दे नाल सी बने हुए हो। अगली फिल्म जिहड़ी इस लिस्ट दे विच आउंदी हैगी है जिसनूं रिजेक्ट कीता सी श्रीदेवी ने ओ सी जी बहुत ही हिट सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान। तो देखो अमिताभ बच्चन की इस फैमिली ड्रामा विच उन्हां दी ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया हैगा। ये रोल पहला हेमा मालिनी नूं ऑफर नहीं होया सी, मतलब कि हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं है अमिताभ बच्चन की इस अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के लिए मेकर्स की। यह रोल पहला श्रीदेवी के हिस्से आया सी पर उन्होंने इस नूं रिजेक्ट कर दिता। रिजेक्ट होया तो फिर हेमा मालिनी कोल गया, नो डाउट हेमा मालिनी इस रोल दे विच बिल्कुल परफेक्ट लगी।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लब्भण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
5: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

हां जी, तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश चालक दिनाल से बने हुए। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित ते शाहरुख खान दी एक बहुत ही जबरदस्त सोहनी जही फिल्म सी, ते उस फिल्म दा नाम हैगा है जी दिल तो पागल है। शाहरुख खान स्टारर मूवी हैगी है, बहुत ज्यादा पसंद भी की गई सी। इस दे विच पूजा किरदार हैगा जिहड़ा ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी। पूजा हुण तुसीं पहला सोचो सोचो सोचो कि पूजा किहड़ा किरदार सी। ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी तां श्रीदेवी ने मना कर दिता सी, तां इह रोल बाद विच किसी होर दे हिस्से आया सी। हुण तुहानूं पता लग गया ना कि पूजा किरदार किसदा सी। जी हां, पूजा किरदार निभाया सी माधुरी दीक्षित ने, पर इस दे लई पहला चुनिया गया सी श्रीदेवी नूं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
3: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू

omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए। एक होर शाहरुख खान की मूवी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, ते वो मूवी सी जी डर। डर दे विच पहली बार तो शाहरुख खान नैगेटिव रोल दे विच नजर आए सी। शाहरुख खान सनी देओल की फिल्म है डर, जूही चावला ने किरण का किरदार निभाया सी। बहुत घट लोग जानते ने कि यह रोल पहला श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी, पर श्रीदेवी ने इसनूं मना करता सी, तां फिर रोल गया जूही चावला दे हिस्से। तां नो डाउट जूही चावला ने इसनूं बहुत ही वधिया तरीके दे नाल निभाया हैगा, पर मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी ते हुण इमेजिन करदे आ जे श्रीदेवी हुंदी तां किस तरह दे लगणी सी इह फिल्म।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: मिक्सिंग इन द हाउस।
1: हाँ जी वेला तो हो चुके हैं थोड़े तो इजाजत लैन का थोड़ा टाटा बाय बाय कहने का, पर देखो हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फिल्म थानू दसनी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजैक्ट की सी, ते उस फिल्म जी बहुत ही खूबसूरत जी फिल्म बेटा। जी हाँ इस मूवी दे लई मेकर्स दी पहली पसंद श्रीदेवी सी। श्रीदेवी ने जदों मना करता सी ना तो बाद दे विच इस फिल्म दे विच माधुरी दीक्षित नू कास्ट किया गया सी, ते उन्हां दे हिस्से चली गई, ते उन्हां दी जोड़ी अनिल कपूर दे नाल हिट भी साबित हुई, क्योंकि इस तों पहलां तक तां अनिल कपूर दे नाल जोड़ी हैगी है जिहड़ी उह श्रीदेवी दी काफी ज्यादा पसंद की जाती सी। देखो यह सारिया फिल्मा है जिहड़ियां श्रीदेवी ने रिजैक्ट करतियां। हुण तुसीं इंज करो कि दसो कि कहड़ी फिल्म तुसीं चाहुंदे हो या लगता है कि काश फिल्म दे विच श्रीदेवी नू कास्ट किया जाता तो यह फिल्म बहुत ज्यादा सोहनी होनी सी, है ना। दसो दसो फटाफट देना रेडियो ब्रिसोनी 101.1 सर फेसबुक पेज है जी ब्रिसोनी @brisoni.com साडी ईमेल आईडी है, जरिए जेड़ा भी अपनाना है अपनाओ, साडे नाल गल्लां बातां जरूर करते रहा करो, है ना। तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो। बाकी मैं तो यही कहना है जी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, कल मिलते हैं, करते मुलाकात, सत श्री अकाल।

0: बोला मुँह।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
12: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
13: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
12: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
13: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
12: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: तुम जीत गए।
5: हम जीत गए।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane,

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यार, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने।
0: का विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझे।

0: भी हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331711 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331711। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
5: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ, ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
6: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365। That's 3273-7365 or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस, ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ, एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend, or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार, आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
10: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
0: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
6: तुम जीत गए।
7: हम जीत गए।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। वी प्राइड आवरसेल्व्स इन

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents

स्कोर भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

क्योंकि वीरों के भी शिरोमणि सरदार खड़े थे, गुरु द्रोण दादा भीष्म कृपाचार्य खड़े थे, लड़ने के लिए सब कोई तैयार खड़े थे, पर रणभूमि में तो अपने परिवार खड़े थे। इन सब को देख अर्जुन का दिल दहल गया, फिर हाय उसके मुंह से उस दम निकल गया, इन गुरुजनों पे कैसे मैं वार करूंगा, किस किस का समर भूमि में संहार करूंगा, कांधे से तीर तरकश गांडीव छोड़कर, कहने लगा मोहन से वो हाथ जोड़कर, प्रभु ये राजपाट वैभव मुझको न चाहिए, इस कुल कलंक से प्रभु मुझको बचाइए, ये जर जमीन मुझको सुवर्ण न चाहिए, जो कुल का नाश

0: बोले श्री कृष्ण अर्जुन से, ऐ पारथ सुनो,
1: ऐ पारथ,
0: बोले श्री कृष्ण।

जाओगे तुम जो समर भूमि से, सारी दुनिया हंसेगी तेरे नाम पर। लौट जाओगे घर तुम समर भूमि से, सारी

वीर माता से पाया है तुमने जन्म, तू उसी माता कुंती का रख ले भरम। अरे वीर माता से पाया है तुमने

जिसको कहता है तू मेरा परिवार है, वो सभी तुमसे लड़ने को तैयार है। जिसको कहता है, अरे जिसको कहता है तू मेरा परिवार है, वो सभी

पर जग में सम्राट कहलाएगा, मर गया रण में तो स्वर्ग में जाएगा। जीत कर जग में तू सम्राट कहलाएगा और मर गया रण में तो स्वर्ग में जाएगा।

जब तक हूँ मैं तू हार सकता नहीं, कोई रण में तुम्हें मार सकता नहीं। साथ जब तक हूँ मैं तेरे तू हार सकता नहीं, और कोई

मैं ही धरती गगन, मैं ही पाताल हूँ, मुझको पहचान, मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही धरती गगन, मैं ही पाताल।

कर्म कर, कर्म शर्मा ही प्रधान है। अर्जुन कर्म कर, कर्म शर्मा ही प्रधान है, कर्म ही लक्ष्मी और कर्ण भगवान है। कर्म कर, कर्म शर्मा ही प्रधान है, कर्म ही लक्ष्मी और कर्म भगवान है।

जीवन बहुत अनमोल है, ये जीवन, और इस जीवन की सच्चाई को ढूंढने में, यानी हम क्या हैं, क्यों हैं और कहां से आए हैं, ये जानने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम इस सफर में, जीवन आधार में, अपनी जिंदगी के पर्पस को ढूंढने की ही कोशिश कर रहे हैं, शायद मिल जाए हमें। और ये पर्पस जो है, ये किसी जाति धर्म में नहीं बंटता, ये पर्पस जीवन का पर्पस कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, ये एक ऐसा पर्पस है जो हर मनुष्य के मन में है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मनुष्य के मन में है, अगर वो अपनी खोज में है तो। तो अगर आप भी अपनी खोज में निकल पड़े हैं तो बस हमें सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ, और जीवन आधार का ये सफर इस अगले गीत के साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी।

एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर सुबह के हमारे आत्मा को जगाते और मन को शुद्ध करते सफर जीवन आधार में। और इस सफर में आपका साथ कुछ ऐसे गानों के साथ आज मैं दे रही हूँ जो गाने मन को, तन को और बुद्धि को भी शुद्ध करते हैं। आपको किसी जाति या धर्म से नहीं जोड़ते, आपको इंसानियत से जोड़ते हैं और इंसान बनाते हैं। आपको जीने की सही वजह बताते हैं और जीने की राह दिखाते हैं। अभी एक ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे हमारे जीवन आधार के सफर में आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर श्रोताओं, आप कदम उठाने से डरते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं, यानी क्या करें क्या ना करें ये सोचकर मन अक्सर घबरा जाता है। पता नहीं आप जो कर रहे हैं उसमें वो ऊपर वाला आपका साथ देगा या नहीं, पता नहीं आपने जो चाहा है वो आपको मिलेगा नहीं, या आपने सही चाहा है या गलत चाहा है। अक्सर मन इस बात के बीच में विचलित होता रहता है। लेकिन अगर एक बार ठान लिया है कि ये करना ही करना है, अगर एक बार मन ने तय कर लिया है कि ये राह अपनानी ही अपनानी है, तो भला मन को विचलित क्यों होने देना। फिर तो जो ठान लिया सो ठान लिया, जब कदम उठा लिया तो रास्ते की परवाह क्यों करनी। फिर तो आपका जो पैशन है, आपकी जो चाहत है, वो आपको आपके लक्ष्य तक ले ही जाएगी, है ना। तो चलिए इसी बात पर आपके लक्ष्य के नाम सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

जीवन आधार। जी हाँ श्रोताओं, यही सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। जीवन आधार हमारा वो सफर है जहाँ पर आप जीने की सही वजह ढूंढ पाते हैं, अपने जीवन का डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज हमें परेशान करती है वो ये कि हम इस पृथ्वी पे आखिर है क्यों, यानी हम क्यों हैं यहाँ, हमें क्या करना है। तो बस उसी जीवन को ढूंढने की हमें कोशिश करते हैं जीवन आधार में, और ऐसी ही कोशिश आज एक बार फिर से हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए भी बढ़ते हैं आगे इसी सफर में इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

भाग्य। कहते हैं जो भाग्य में एक दफा लिख जाए फिर वो कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी प्रार्थनाओं में वो शक्ति है जो शायद भाग्य का लिखा भी बदल सकती है। यूं ही नहीं कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले उस शक्ति का, उस ऊपर वाले का, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो इस सृष्टि को चला रहा है। आप किसी भी पद पर हो लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि कोई है जो इस सृष्टि का नायक है और हम सबकी बागडोर उसने अपने हाथ में थाम रखी है और वही भाग्य का रचयिता भी है। तो अगर वो आपसे प्रसन्न है तो भाग्य लिखा हुआ बदल भी सकता है। बस उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो आपका भाग्य बदल सकता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। और एक बार वो आपको मिल गया फिर आपको वो भी मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओं, ये था जीवन का एक और सफर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर जीवन आधार। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे थे। कल फिर से इसी सफर में आपसे फिर से मिलूंगी जीवन की कुछ बातों और जिंदगी की कुछ गहरी और बहुत गहरी सच्चाइयों को लेकर। लेकिन अब आज के सफर से इजाजत चाहती हूँ और इस वादे के साथ कि कल लौटूंगी और फिर से जीवन आधार में हम अपनी ही जिंदगी को खोजने का प्रयास करेंगे। आज के सफर से अब दीजिए विदा। नमस्कार।

हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन के साथ चानी के सफर प्रोग्राम में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही हेल्दी होंगे, हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, आप सभी का दिन मंगलमय जाए। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, उसके बाद जानेंगे आज की बातचीत रेडियो ब्रिस्वानी में।

प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रार्थना कभी करनी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करने से भगवान हर चीज हमारी सुनता है। और प्रयास करना यानी कि कभी भी हमें ट्राई करते रहना चाहिए, ट्राई करना, प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करने से कभी भी किसी की हार नहीं होती, ये अगर हम याद रखेंगे तो हम जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए इसके चलते हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये ट्रैक रिटू प्रिस्वानी में।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कुछ खबरें। रूस ने परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू कर दिया है और इस परीक्षण कार्यक्रम में हथियारों की तैयारी और उन्हें चलाने के न्यूनतम समय को परखा जा रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ही पिछले 4 वर्षों में रूस ने लगातार परीक्षण किए हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में बनी युद्ध जैसी स्थिति में ये परीक्षण पहली बार हो रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस परीक्षण में बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के साथ परमाणु हथियार दागने का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार परमाणु हथियारों की परीक्षण अभियान में कुल 64,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं और 7,800 सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गीत।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगली खबर। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसकी वजह से लोग दिन में बाहर निकलने से डर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार जैसे राज्यों में पारा बहुत अधिक जा रहा है। मौसम विभाग ने भी इस पूरे हफ्ते तक उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में हीट वेव से लेकर भीषण हीट वेव की चेतावनी भी जारी की है। आपको बता दें कि इसके बीच पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में कल से यानी कि आज से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून पर नया अपडेट ये है कि अगले 3 या 4 दिनों में ये दक्षिण पूर्वी अरब सागर, कैमरून क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के बचे हुए भागों और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में आगे बाढ़ के लिए परिस्थितियां अनुकूल है आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गीत।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा के दौरान पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हिंदी में बोलकर सबको चौंका दिया। पीएम मोदी के साथ साझा बयान जारी कर रही मेलोनी ने इटली भारत संबंधों की भावना को व्यक्त करने के लिए हिंदी के एक वाक्य का इस्तेमाल किया। उन्होंने पीएम मोदी की ओर देखते हुए कहा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आपको बता दें कि इसके बाद पीएम मेलोनी ने अंग्रेजी में कहा कि उम्मीद करती हूं मैंने इसे ठीक से बोल दिया। मेलोनी को हिंदी में बोलने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी है। पीएम मेलोनी बुधवार को रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त बयान जारी कर रही थी और इस दौरान वे भारत इटली रिश्ते की चर्चा कर रही थी। मेलोनी ने इतावली भाषा में कहा कि एक भारतीय शब्द है जो इसे बहुत अच्छे से बताता है, वह है परिश्रम। उन्होंने अपने ही अंदाज में परिश्रम शब्द का हिंदी में उच्चारण किया। इसके आगे उन्होंने परिश्रम, जिसका मतलब है कड़ी मेहनत, लगातार, कमिटमेंट, एक शब्द जो मुझे पता है कि भारत में बहुत बार इस्तेमाल होता है और इसे बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गीत।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी, जहां पे प्रोग्राम चल रहा है जाने का सफर। आशा करते हुए ये सफर आप सभी को बेहतरीन लग रहा होगा और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आज आप सभी ने आनंद लिया है कुछ खबरों की जानकारी जो है वो प्राप्त की है। ऐसी ही जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। आप सभी बने रहिए रेडियो ब्रिसवानी में। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मालदीव की गुफा में 5 इटालियन डाइवर्स की मौत। मालदीव के आकर्षक नीले समुद्र, सफेद रेत और लग्जरी रिसोर्ट के नीचे खतरनाक अंधेरी गुफा छिपी है। 15 मई 2026 को 5 अनुभवी इटालियन डाइवर्स इस गुफा में उतरे और कभी वापस नहीं लौटे। उनकी तलाश में लगे मालदीव के सैन्य ड्राइवर की जान भी चली गई। रूस यूक्रेन की लड़ाई में हार रहे पुतिन, चिनफिंग ने किया नोटिस। ट्रंप की अब भी समझ में नहीं आई बात। सीएनएन के ग्लोबल अफेयर्स एनालिस्ट ब्रेट एच मैकगर्ग के विश्लेषण के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध में रणनीतिक रूप से हार रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि व्लादिमीर पुतिन को एक दिन यूक्रेन पर आक्रमण करने का पछतावा हो सकता है। युद्ध के मैदान पर बदलते रुझान इस बात की ओर इशारा करते हैं। भारत और इटली के बीच डीडीडी की डील, पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए दिया नया मंत्र। 2 दिवसीय इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा बयान में कहा कि पिछले लगभग 3.5 साल में मुझे कई बार प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलने का मौका मिला है। ये भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। आए थे भारत में हमला करने, लुक बदलने के चक्कर में फंस गए। मिशन छोड़ लश्कर के आतंकियों ने कराया मेकओवर। लश्कर ए तैयबा का आतंकी उस्मान जट एक खास मिशन पर था, लेकिन अपनी शान और शौकत उसके आड़े आ गई। वो भारत में स्लीपर सेल तैयार करने के लिए पाकिस्तान से घुस भारत तो आ गया, पर अपना मिशन भूलकर श्रीनगर के एक मेडिकल क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने चला गया। वहीं एक अन्य आतंकी शब्बीर अहमद लोन ने भी गुड़गांव में दांतों का इलाज करवाया और दोनों ही पुलिस के घेरे में आ गए। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की G7 समिट में हो सकती है मुलाकात, इमैनुअल मैक्रों ने दिया न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात को लेकर जोरदार राजनीतिक चर्चा हो रही है। संकेत मिले हैं कि ये दोनों नेता फ्रांस में आमने सामने आ सकते हैं। इस अटकल की वजह ये है कि फ्रांस जून में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जहां इन दोनों नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। इस साल की शुरुआत में भारत यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को इस हाई प्रोफाइल बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता,
1: स्वागत है आप सभी का रेडियो बिजवानी पर। आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अमिता नमस्ते।
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थर्सडे मॉर्निंग, इजंट इट?
1: या, इट्स अ ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड।
2: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
1: तो जब ब्यूटीफुल डे की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आज के लिए कहा गया है कि आज मौसम साफ रहेगा, कम से कम 12 और अधिक से अधिक 24 डिग्रीज रहेगा। ये तो हो चुका है, दैट मींस इट वाज 12 डिग्रीज है। कल के लिए पार्टली क्लाउडी कहा गया है, 15 and 23 रहेगा, नो रेन। सैटरडे को 16 and 25 नो रेन, और संडे को पॉसिबल शावर्स कहा गया है। मिनिमम विल बी 16, मैक्सिमम विल बी 24। इमेजिन इट्स अ डिफरेंस है फ्रॉम टुडे। मंडे को पॉसिबल शावर्स कहा गया है, 16 and 25 रहेगा, और ट्यूजडे को 15 and 23, और वेंसडे को 13 and 22 हो जाएगा दोस्तों। ट्यूजडे और वेंसडे को पॉसिबल शावर्स कहा गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ब्रिस्बेन का वेदर, और देखते हैं रास्ते का क्या हाल है दोस्तों। कहा गया है कि अभी भी एक मिनट हुआ है आया है, ईस्टविश मोटरवे गुडना स्टेशनरी व्हीकल है, नो ब्लॉकेज ईस्ट बाउंड टूवर्ड्स डेरा, और ईस्टविश मोटरवे डेरा मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ है, 5 मिनट पहले आया था। वन लेन ब्लॉक्ड, ओके। गेटवे मोटरवे नजी हैज़र्ड साउथ बाउंड इज नाउ क्लियर। ओके, दैट्स अबाउट इट,
2: दैट्स अबाउट इट।
1: ओके, आज एक गाना हो जाए तब हम कुछ बातें करेंगे।
2: यस, सिंग दैट वी गॉट सच ब्यूटीफुल वेदर।
1: या,
2: सो आई थॉट ऑफ द सॉन्ग हियर।
1: ओके।

0: और हम हेलो हेलो करना चाहेंगे अगर अभी आपने आए हैं सुनने के लिए। अच्छा, एक ऐसा राज की बात जो गीत है, एक राज की बात करता है, क्या बोलते हैं, जितना भी आप अगर इसको छुपाने को कोशिश करें, जो दिल की बात एक दिन सामने आ ही जाती है। बताओ कौन सा गीत है। We had only one person that named it right
1: yesterday. Yeah, let's see how many can do it today.
0: ठीक है, एक ऐसा राज है दोस्तों, बात करता है कि जितना भी छुपाएगा ना, जितना भी छुपाओ, जो दिल की बात है एक दिन सामने आ ही जाती है। बताओ क्या है। नंबर है 04300031701। ओके, आज का मैं बहुत सिंपल रखा हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल। मे बी यू माइट बी गेसिंग इट टू।
1: Anyway, there is a song in my mind, but I will ask you, okay. I will tell you off air, and you can tell me if I'm wrong or right. But seeing that it's 7:30, and today is the 21st of May, so happy birthday if you're celebrating your birthday today, and happy anniversary if you're celebrating your anniversary. What happened?
0: I'm laughing at something. I was just thinking that... You know how we tease each other, right?
1: Yes.
0: I was just thinking, if you name it right, then there'll be so many people that will have it right.
1: Gee, thanks very much for that. Thank you. Thank you very much.
0: Well...

0: फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
3: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Well, we have one answer that came right. So, that's what... Well, I made it easy this time, didn't I?
6: Yep. I think that being very rude of you... As you said initially, if I can guess it, then so many people would guess it. Now, that is the biggest insult I have heard so far.
5: Really?
6: Yeah.
5: I only do it with you. I only can say it to you, nobody else. Right. Jitna bhi chupao, dil ki baat, ek din saamne aahi jaati hai baat. You know that? What happened?
6: Nothing. I'm listening to you.
5: Oh, okay. So,
6: you know how I listen to you.
5: Yeah. Oh, sure. All right.
6: Anywho, let's keep going.
5: Okay.

0: कभी गोरी कभी मैडम, क्या क्या नाम से आप लोग को हम बुलाते हैं ना. चलो बहुत नाम दिया गया है. ओके आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मूड आई एम इन टुडे.
1: आई आल्सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मूड यू इन.
0: हमारे लिसनर्स का कितना लेवल है अभी मैं देख रहा हूँ. थोड़ा लेवल को नीचे करा हूँ ताकि लोग बता सके कौन सा गीत है.
1: You.
0: Don't get mad at me. I'm just pulling your leg. I'm just having a. Okay? ऐसे कोई बात नहीं दोस्तों. आप तो सब हमारे अपने हैं, इसीलिए तो ना मिता.
1: Well,
0: ever since I made
1: that comment, everyone can take a joke. How's that?
0: Yeah. Sometimes people say my jokes are not very understandable.
1: Yeah.
0: Is
1: that's
0: it?
1: A problem.
0: Yeah.
1: Yeah, but at least I think I get it most of the time.
0: You got it. Yeah, most of the time.
1: Most
0: not
1: of the
0: all
1: time.
0: The time.
1: Not all the time. No.
0: चलो एक और बड़ा प्यारा गीत है दोस्तों. ये जो गीत है ऐसे ऐसे गीत जब मैं टीनेजर था उस समय से मुझे बहुत पसंद है. ओके कुछ मालूम नहीं था बहुत कुछ, अभी भी कहाँ बहुत कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी एक गीत मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था दोस्तों. शायद आपको भी अच्छा लगे.

देखिए दोस्तों, रफ़ी साहब ने बहुत गीत गाए हैं. आई मीन आई डोंट थिंक देयर एवर बी अनदर रफ़ी साहब. और एक अगला जो गीत मैं अभी तक, इफ यू डोंट माइंड, आई प्ले दिस सॉन्ग जस्ट टू शो रफ़ी साहब्स वर्सेटिलिटी, यू नो हाउ ही कुड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ये गाना जो है दोस्तों, एक कौन सा मूवी है, प्यासा का गाना है, 1957 मूवी से लिया गया. और एस डी बर्मन जी ने इसको म्यूजिक दिया है इसमें दोस्तों.

0: ये जो गीत है मुझे नहीं मालूम है ये किसका मूवी. आई थिंक इट वाज हु वाज दैट एक्टर डायरेक्टर दैट कमिटेड सुसाइड. आई थिंक
1: सुपरहिट गाने इस
0: आई यू नो
1: जॉनर
0: इफ एनीबॉडी नोज प्लीज हेल्प मी. अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. I think it was Gurudutt.

0: तो दोस्तों, रफी साहब का कमाल, क्या इन्होंने इतना हाई पिच में गाया है, स्पेशली जैसे मैंने पहले कहा, आई हैव अ सेशन विद रफी साहब, हम बातें किए हैं दोस्तों, बहुत छोटा था उस समय में, लेकिन ऐसे हुआ कि मेरा लक था कि कुछ लोगों के साथ हम उनसे बातें कर रहे थे, और बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन जब वो गाता है तो आप सोचेंगे कैसे गा लेता है। जी हाँ दोस्तों, सही कहा था मैंने, आई थिंक आई रिमेम्बर राइट, गुरुदत्त डेथ जो डेथ है इज वाइडली बिलीव टू हैव बीन आइदर सुसाइड और एन एक्सीडेंटल ओवरडोज, बट इट वॉज नेवर कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ही डाइड ऑन 10th October 1964 इन बॉम्बे एट द एज ऑफ 39, सिर्फ 39 था। ही हैड रिपोर्टेडली कंज्यूम्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड स्लीपिंग पिल्स। सम पीपल क्लोज टू हिम बिलीव्ड इट वॉज सुसाइड, स्पेशली बिकॉज देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ एलियस सुसाइड अटेम्प्ट्स। अदर्स इंक्लूडिंग हिज सन अरुण दत्त बिलीव्ड, जी हाँ, अरुण दत्त वॉज हिज सन्स नेम, believed it may have been an accidental overdose related to insomnia and heavy drinking. ऐसे आप जानते हैं ना, गुरुदत्त ने बहुत क्लासिक फिल्म्स बनाए हैं, जैसे प्यासा, कागज के फूल, साहेब बीबी और गुलाम। Many people feel the sadness and loneliness seen in his films reflected struggles in his real life as well. Even today, his death remains one of Bollywood's enduring mysteries. अभी तक, but जब भी उनके मूवी आप देखेंगे दोस्तों, always a tragedy. और what's wrong? Too much coffee. tragic रिया करता था उनका.
1: Quite
0: tragic that you can't pronounce the word tragedy.
1: What's happening? My hand's shaking? Yeah, a
0: little bit. Too much coffee. You're shaking it deliberately. No, look. See?
1: Oh, it is.
0: Yeah. Okay. So that was a little bit on him, right?
1: Mm.
0: But you could see at the end how Rafi Saab pulls that song. I mean, it's just amazing. एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत, और इस समय 8:18 हो गया। ओह, टाइम फ्लाइज।
1: व्हाट द टाइम?
0: 8:18। आई थिंक आई गॉट लॉस्ट इन दैट सॉन्ग।
1: यू डिड। आर यू गोना प्ले दैट सॉन्ग एज द आंसर और यू गोना लीव इट टिल व्हेन? Are you going to give anyone more time to guess?
0: I don't think people will be guessing anymore.
1: Okay, anymore, yep. Okay.
0: Huh?
1: Yep.
0: Should I play it now?
1: I would think so.
0: Okay.
1: Because time's ticking.
0: Yeah.
1: 8:18.
0: Okay.
1: Probably you should just play that song.
0: Yeah.
1: And you've forgotten what song it is?
0: Na, mujhe yaad hai.
1: Toh?
0: So I'll play it, but I just want to take the names of people that...
1: Okay.
0: Hold on, where are we? Achha, Prema ji gave the right answer. And let's see. I think Vinny also gave
1: nee,
0: the right...
1: Nay, Vinny, nay.
0: No, Vinny did. No? Who did?
1: Krish.
0: I had to be Krish, not nee, Vinny.
1: Not Vinny.
0: Vinny ko kaha malum honga.
1: No, but she admitted, eh? She admitted. She said.
0: Oh. I said it to Vinny now.
1: She said, hey, I could have lied, Vindhi but it would have bothered me the whole day.
0: Yeah, Vinny ko kaha malum hai gana. Aur Maninder bhai ne bhi right answer diya tha.
1: Yes, he got it right.
0: Aur, okay, chalo, geet bacha deta hoon, dosto. Aur kaun sa geet hai, sunte hai. Aap log bhi koshish kiye honge. Lekin...
2: हाँ, अरे चुप क्यों हो गया? बोल,
3: मजा आ रहा है।
4: तेरा मतलब है?
5: मालूम है।
4: क्या मालूम है?
5: वही
4: क्या
5: छुपाना चाहते?
4: क्या छुपाना चाहते?
5: किसकी बात?
2: ठहर जाओ।

0: अरे अमिता, हम अकेला अकेला आए, अकेला जाएंगे. यू नो, दुनिया में लाखों हैं दिल वाले
1: लेकिन
0: और प्यार नहीं मिलता.
1: यू कांट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड.
0: नो, द वर्ल्ड इज सच, एवरीबॉडी इज पुलिंग देयर ओन लोड और व्हाटएवर, राइट?
1: यस यस.
0: जब ये गाना आपने लगाया, मुझे एक गाना और याद आ गया, और ये गाना भी शायद मेरे टीनेज समय का है. बहुत समझता नहीं था, लेकिन फिर भी सुनने में अच्छा लगता था. चलो सुनते इस गीत को.

करूं।

0: किसको प्यार करूं? वेरी इंटरेस्टिंग। और चलिए ओ लाला ने रिक्वेस्ट किया है गाना।
1: या बट व्हाई इज पंडित जी?
0: या
1: व्हाट
0: What? Because he
1: Why is he going gully?
0: Because that's what he does.
1: And calling out.
0: पंडित लोग क्या करते हैं? गली जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं.
1: लेकिन he's calling
0: पंडितों का
1: calling,
0: ये काम है.
1: Calling out and calling out पुकारता.
0: चला हूँ मैं गली. हाँ ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे.

और चलते आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समय कम है और कुछ ऐसे ही गीत, एक और गीत इसी तरह सा कुछ है थोड़ा सा, चलो सुना देता हूँ।

0: की समझ।
1: पुआ गंगाराम कोई नहीं पसंद आया इनको। सो सैड। एनीवे और चलिए एक और गीत सुनते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा ही गीत है ना। ओके
2: ला ला ला ला।
1: पुआ गंगाराम कोई नहीं पसंद आया इनको। सो सैड। एनीवे और चलिए एक और गीत सुनते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा ही गीत है ना।

0: Okay, that's enough. I'm going.
1: I'm going too.
0: Going. Oh, चलो दोस्तों आप भी जाना चाहते होंगे और बहुत अच्छा लगा आप सभी ने बहुत से लोग

बहुत ख्याल रखा करो अपना तुम, क्योंकि मेरी आम से जिंदगी में बहुत खास हो तुम। जी हाँ जनाब, बहुत खास हैं आप हमारे लिए। अपना ध्यान रखा करिए, अपना ख्याल रखा करिए, तो हम आपसे हमेशा कहते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। और आपके होने से ही ये जो सफर है ना, ये जो सुबह का सफर है हमारे, इट हैपेंस का सफर है, ये और खूबसूरत हो जाता है। और देखिये ना, आज आपके आने से एक बार फिर से ये सफर हो गया है खूबसूरत। तो आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। तो चलिए आपकी सुबह को आज एक बार फिर से खूबसूरत बनाते हैं इट हैपेंस के एक और सफर के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से सताक्षी है आपके साथ और लेकर आई है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। जी हाँ, रोज की तरह आज भी होंगी ढेर सारी खूबसूरत बातें और एंजॉय करेंगे बेहतरीन मॉर्निंग नंबर्स। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं इट हैपेंस की, बढ़ते हैं आगे इस अगले ट्रैक के साथ।

छापन सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। दोस्तों आपके साथ है सताक्षी और सुनवा रही है आपको आज की सुबह के कुछ बहुत ही खास नंबर्स। और इसके पहले के सफर में आगे बढ़े, हमारी बातों के सफर में आगे बढ़े, विश करते हैं उनको जिनका आज है हैप्पी बर्थडे। सो जन्मदिन बर्थडे बहुत बहुत मुबारक। और हमेशा की तरह हम आज भी विश करते हैं कि आपकी हर जायज ख्वाहिश, आप जो भी पाना चाहते हैं, आपकी हर जायज ख्वाहिश मुकम्मल हो, पूरी हो और आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से सराबोर रहे। जिनकी शादी की सालगिरह यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी है आज, उनको एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे का साथ बहुत बहुत मुबारक। और जिनकी लाइफ में भी आज कुछ स्पेशल और खास होने वाला है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके लिए डेडिकेट करते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

वेलकम बैक, इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रीजु प्रस्वानी 1701 एम पर। तो कभी कभी हम कुछ ऐसे रिश्तों में होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। आप उसे नहीं कह सकते कि यार ये प्यार है या ये रिश्ता जो है ये शादी तक जाएगा। नहीं, आपको बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। एक दूसरे के साथ बिताया गया वक्त आपके दिन का सबसे खूबसूरत और खास वक्त बन जाता है। और ऐसे रिश्ते जो हैं, मुझे लगता है फिर उन्हें नाम की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि नाम के रिश्ते जो हैं उनको तो वैसे भी बहुत सारे लोग धोखा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने ही रिश्तों में, जिनको नाम दिया है उन्होंने, उन्हीं रिश्तों में वो रह नहीं पा रहे हैं। तो उन रिश्तों से तो कहीं ज़्यादा अच्छे ये बेनाम रिश्ते हैं, जहाँ दो पल ठहर के आपको कम से कम सुकून तो मिलता है, जिसके पास जाकर अपने दिल की बात कहने के लिए आपका दिल तो मचलता है। तो हाँ, इन रिश्तों में कुछ तो खास है ना। और ऐसे रिश्तों के नाम मैं प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। इंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

आपस एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर। रिश्तों में लड़ाइयाँ क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि भाई देखिए, दिन की शुरुआत में मुझे लगता है कि अगर रिश्तों में हमारे रिश्ते परफेक्ट हैं तो मॉर्निंग अपने आप परफेक्ट हो जाती है, और अगर रिश्ते कुछ ऊंच नीच से गुजर रहे हैं तो आपकी मॉर्निंग सुबह सुबह उठते ही बन जाती है बढ़िया एकदम, है ना? हाँ, तो वैसी ना बने, परफेक्ट रहे, अच्छी रहे, बस हम यही चाहते हैं। तो भाई रिश्तों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है और क्यों लड़ाइयाँ होती हैं? तो रिश्तों में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ मुझे लगता है तब होती हैं, या मैंने जो गौर किया उसके हिसाब से भी भाई यही सही है, कि आपको लगता है कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो, आपको लगता है कि रिश्ता जो है आपका एकदम फिल्मी है, जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ है, एक साथ खा रहा है, एक साथ हंस रहा है, एक साथ बोल रहा है। लेकिन भाई हर फेज़ में ज़िंदगी के ऐसा नहीं होता है, हर पल वो मिठास रिश्ते में नहीं रह सकती है, कड़वाहट भी आएगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, चार बर्तन खटकेंगे भी, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, और यही फैमिली है, यही रिश्ते हैं। आपका दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, हमेशा उसमें मिठास बनी नहीं रह सकती है। तो जो फिल्मों ने हमें एक भर दिया है ना कि परफेक्ट फैमिली वो है या परफेक्ट रिश्ता वो है जहाँ बस हमेशा हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो वो हंसी जो है वो भी झूठी हो जाती है। ठीक है जी, फिलहाल चलिए एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ इसी बात पर, और सुनते रहिए इट्स सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर। और उसके बाद बात करूंगी रिश्तों की असली परीक्षा यानी कि असली एग्जाम कब होता है। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: इट हैपन, सुन रहे हैं आप रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर, और अभी हम आ गए हैं हमारे 3 बैक टू बैक ट्रैक्स की कड़ी में। जी हाँ, गानों की हैट्रिक। गानों की हैट्रिक का ये पहला ट्रैक है आपके लिए, सुनिए इसे और सुनते रहिए इट हैपन सताक्षी के साथ।

आप सुन रहे हैं गानों की हैट्रिक रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। आगे बढ़ेंगे इस अगले गीत के साथ, सुनते रहिए गानों की हैट्रिक साक्षी के साथ।

जी हाँ, मैं बहुत शांत रहती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ जब आप सुनते हैं गानों की हैट्रिक। लेकिन वादा है मेरा कि इस लास्ट ट्रैक के बाद, गानों की हैट्रिक के इस लास्ट ट्रैक के बाद होंगी आपके साथ ढेर सारी बातें। सो एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए इट हैपेंस मेरे साथ।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

सुबह थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि रिश्तों में झगड़े क्यों होते हैं, अलग क्यों हो जाते हैं हम, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ को, इस बात को समझना है कि रिश्तों की असली परख कब होती है, कब उन्हें आप परख सकते हैं कि जिस रिश्ते में आप हैं वो आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं। भाई पॉजिटिव चीज़ें जब लाइफ में चल रही हैं तब तो रिश्ते की परख आप कभी भी नहीं कर सकते। जब परिस्थितियाँ अलग होती हैं या मुश्किल होती हैं, जब गलतफहमियाँ रास्ता रोकती हैं, उस समय आप एक रिश्ते की परख कर पाते हैं। जब सब कुछ आसान होता है उस वक्त तो रिश्ते भी बढ़िया रहते हैं, है ना। जब आपके इमोशंस भारी हो जाते हैं और आपका विश्वास हिलने लगता है, उस वक्त लगता है कि यार थोड़ा सा ना हमें इसको समझने की ज़रूरत है, या ये हमें समझ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर उस वक्त एक बंदे ने आपको संभाल लिया या आपने अपने रिश्ते को संभाल लिया, तो फिर रिश्ता जो है उसकी बुनियाद सही रहती है, और वरना वो डगमगाता हुआ रिश्ता और भी खोखला हो जाता है। फिलहाल चलिए, आपको आगे ले बस हिलने लगता है, उस वक्त लगता है कि यार थोड़ा सा ना हमें इसको समझने की ज़रूरत है, या ये हमें समझ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर उस वक्त एक बंदे ने आपको संभाल लिया या आपने अपने रिश्ते को संभाल लिया, तो फिर रिश्ता जो है उसकी बुनियाद सही रहती है, और वरना वो डगमगाता हुआ रिश्ता और भी खोखला हो जाता है। फिलहाल चलिए, आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ। इंजॉय कीजिए।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर, और आपका ये मॉर्निंग शो और भी खास बन रहा है इन पलों के साथ। पर एक बहुत अच्छी लाइन याद आई है, सोच आपके साथ बांट ली जाए। तो बात कुछ यूं है कि जो रिश्ता आपको रोज तोड़े वो रिश्ता आपको कभी जोड़ नहीं सकता। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिश्ता आपको रोज तोड़े वो रिश्ता आपको कभी जोड़ नहीं सकता, और जहां रुकना आपको खुद से दूर कर दे वहां से चले जाना ही सबसे सही फैसला होता है। जी हाँ, हमेशा रुकना प्यार की निशानी नहीं होता। कभी कभी रुकना सिर्फ इस बात की निशानी होता है कि अब हम खुद को समझने लगे हैं, और जब आप समझ पाते हैं कि आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं तब रुकना अपने आप गलत लगने लगता है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपको ये लगता है कि यार हम थोड़ा और ठहर जाएं, शायद चीजें बेटर हो जाएं या ठीक हो जाएं, तो ऐसे में आप खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपकी जिंदगी का पल जो है वो हर पल बीत रहा है, आपकी जिंदगी हर पल बीत रही है। तो ऐसे में अगर आपको ये लग रहा है कि चीजें ठीक हो जाएंगी और बहुत एफर्ट्स करने के बाद या बहुत टाइम से ट्राई करने के बाद, तो फिर अब आप अपने साथ बेवकूफी कर रहे हैं। यार कुछ चीजें ना मुझे लगता है छोड़ देनी ज्यादा बेटर होती हैं। लाइफ में लेट गो करना सबसे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, खासकर आज की जिंदगी में। एक और ट्रैक इसी बात पर प्ले कर रही हूं आपके लिए, एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.